आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों से अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और पढ़ाने के नए तरीकों का इस्तेमाल करने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने और उनके चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने शिक्षकों से विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच और जिज्ञासा की भावना विकसित करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने सभी समर्पित शिक्षकों के योगदान

0: योगदान के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि वो ऐसी पीढ़ियों का निर्माण करते रहे जो देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें महान शिक्षक बताया। शिक्षक दिवस पर हर वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये शिक्षक 27 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश और 6 केंद्रीय संस्थानों से चुने गए हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और प्राध्यापकों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। कॉलेज की स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। पिछले 100 वर्ष में इस संस्थान ने कई विद्वान, पेशेवर और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को तैयार किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज चेन्नई के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो इंडिया वॉल्स में शामिल होंगे। ये हृदय से जुड़ी बीमारियों के इलाज को बेहतर बनाने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ग्रस्त त्रिशूली बाजार इलाके से 3 और भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें 5 साल का एक बच्चा भी शामिल है। सुरक्षित निकाले गए भारतीयों की संख्या 169 हो गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 275 भारतीय अब भी लापता हैं। वहीं चीन से 1907 भारतीय सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि भारत ने नेपाल में बाढ़ के बाद अब तक लगभग 95 टन राहत सामग्री भेजी है। भारत आगे भी नेपाल की जरूरत के अनुसार मदद जारी रखेगा।
2: We have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal.
3: हमने नेपाल सरकार और वहाँ की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है। एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुँचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे।
2: And recovery efforts in the country.
0: महिला क्रिकेट में T20 एशिया कप के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत ने थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उधर विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगा। इसमें 19 देशों के 105 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय पुरुष डबल्स की जोड़ी आज चाइना मास्टर्स के सेमीफाइनल में मलेशिया की जोड़ी के साथ खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की

0: तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: आदि युगल गीताल माधुर्यम।

কথা কৌশল বিকাশ ও উদ্যমশীলতা মন্ত্রণালয় দ্বারা চুনে গিয়ে সুযোগ্য প্রশিক্ষককে যোগদান কো রাষ্ট্রীয় স্তর পর মান্যতা দি গই হে দেশ কে বিকাশ মে একাডেমিক এক্সেলেন্স স্কিল ডেভেলপমেন্ট ও এন্টারপ্রেনারশিপ কা বহুত অধিক মহত্ব হে ভারত কো নলেজ সুপার পাওয়ার বানানে কে সাথ সাথ স্কিল ক্যাপিটাল অফ দি ওয়ার্ল্ড কে রূপ মে স্থাপিত করনা আমারি রাষ্ট্রীয় প্রাথমিকতা মে সে শামিল হে यहाँ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कृत आचार्यगण उपस्थित है उनके लिए तथा पूरे देश के आचार्यों के लिए उच्च शिक्षा में भारत का गौरवशाली इतिहास लक्ष्य भी प्रस्तुत करना है और कसौटी भी। हुएंगसान ने लिखा है कि नालंदा विक्रमशिला में पढ़ाने वाले आचार्यों का यश दूर दूर के देशों तक फैल चुका था। उनका चरित्र पूर्णतः निर्मल और अनिंदनीय था। आचार्यगण जानते थे कि समुद्रों और पर्वतों के पार करके अनेक कष्ट सहन करके विदेशों के छात्र अनेक उनके पास आते थे और ज्ञान पिपासा लेकर वो अपने आप को संतुष्ट लाभ करते थे। भारत के विश्वविख्यात आचार्यों की परंपरा को नोबेल पुरस्कार विजेता आचार्य सी बी रमन जैसे शिक्षकों ने आधुनिक युग में आगे बढ़ाया है। ये अपने विद्यार्थियों के साथ खूब घुल मिलकर मॉडर्न फिजिक्स के विभिन्न विषयों पर चर्चा करते थे। जो विद्यार्थी उनसे कोई अच्छा प्रश्न करते थे तो वे पुस्तकों से हटकर अपने विलक्षण अध्यापन से ऐसे जिज्ञासा जागृत करते थे कि उनके विद्यार्थी उन प्रश्नों के माध्यम से विश्व के महान वैज्ञानिकों के मूल ग्रंथों में अवगहन करने जानते थे। देवी और स्वजन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि बच्चों की देखभाल करना पौधों को जोर से सींचने जैसे बराबर है। स्कूल एजुकेशन शिक्षा व्यवस्था का आधार है। ज्ञान और कौशल तो कभी भी प्राप्त किया जा सकता है, परंतु बचपन में ही सदाचार की शिक्षा देना अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। आरंभिक कक्षा में बच्चों के बौद्धिक शारीरिक और नैतिक विकास पर निष्ठापूर्वक ध्यान देकर हमारे शिक्षक अच्छे विद्यार्थियों और कर्तव्यनिष्ठा नागरिकों की भावी पीढ़ियां तैयार करते हैं। विद्यार्थियों ही शिक्षकों की पहचान होते हैं। विद्यार्थी अपने शिक्षकों द्वारा पढ़ाया गया पाठ्यक्रमों भले ही भूल जाए लेकिन उनके व्यवहार को ये सदैव याद रखते हैं। अनेक विद्यार्थी आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिसरों से आते हैं। कुछ अनेक परिवार में पहली पीढ़ी के विद्यार्थी होते हैं। कुछ विद्यार्थी गांव के किसी सामान्य स्कूल से शहर के बड़े स्कूल में आते हैं और थोड़ा असहज हो जाते हैं। कुछ विद्यार्थी स्वभाव से ही संकुची होते हैं। कुछ विद्यार्थी में बहुत प्रतिभा होती है लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है तथा तो कुछ विद्यार्थियों को चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे सभी विद्यार्थी जो किसी कारण से कोई भी कमी महसूस करते हैं उनमें आत्मविश्वास जगाना और उन्हें आगे बढ़ाना शिक्षकों का विशेष दायित्व होना चाहिए। संस्कृत भाषा के शब्द उद्धार का अर्थ होता है खींच कर बाहर निकालना या नीचे से ऊपर ले जाना। विद्यार्थियों का उद्धार करने का पुनीत अवसर केवल शिक्षकों को ही उपलब्ध होता है। हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्शों को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था। अब ये ड्रॉप आउट रेट नहीं के बराबर है। ये उपलब्धि शिक्षकों के

0: प्रयासों से संभव हो सकी है। इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित ना हो। मैं चाहूंगी कि हमारे शिक्षक अपने स्नेह और समर्पण से सभी विद्यार्थियों में ज्ञान, प्रेरणा, नैतिकता और संवेदनशीलता का संचार करें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।
1: अपने संबोधन में शिक्षा और शिक्षक की भूमिका के महत्व को रेखांकित किया माननीय राष्ट्रपति।
2: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो कार्यक्रम का समापन किया जाए।
1: और अब राष्ट्रगान
3: के लिए निवेदन है, राष्ट्रगीत तथा राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विकसित भारत का सपना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से ही साकार होगा। उन्होंने 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने की अपील की। उन्होंने बच्चों का स्क्रीन समय कम करने, खेलकूद और बाहरी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव अभियान जारी। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को 95 टन राहत सामग्री भेजी और अधिक राहत सामग्री के साथ बेली ब्रिज भेजे जाएंगे। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशियाई जोड़ी से होगा। और T20 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज रात भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए ही विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वो सही मायनों में प्रगतिशील समाज होता है।
1: आम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित ना हो।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक अग्रिम पंक्ति के राष्ट्र निर्माता हैं।
1: द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है वो समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है। शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए 48 स्कूल शिक्षकों को ये पुरस्कार दिए गए। उन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। इनमें केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों के 12, राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 5 तथा पॉलिटेक्निक के 4 शिक्षक और संकाय सदस्य शामिल हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में देशभर के शिक्षकों को उनकी निस्वार्थ सेवा और भारत के भविष्य को आकार देने में उनके योगदान के लिए नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है।

0: कि हर विद्यार्थी के भीतर का बचपन जीवंत रहे, इसके लिए शिक्षकों को अपने भीतर के बच्चे को भी जीवित रखना होगा। श्री मोदी ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय की आदत पर चिंता जताई।
1: एक विषय है स्क्रीन टाइम, अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है। मेरे मन में एक विचार आता है, या तो वो बच्चा खेल कूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा, खेलकूद मतलब वो वीडियो गेम नहीं, मैंने एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सकते, और ऐसे में क्रिएटिविटी की तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों को आदत बनानी चाहिए।
0: प्रधानमंत्री ने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की।
1: ड्रग्स का मामला बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा सा नहीं, पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है क्या।

0: जाने नहीं देना चाहिए और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते।
1: प्रधानमंत्री ने स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता का भी उल्लेख किया।
0: मैं काशी का सांसद हूँ तो मैंने वहाँ एक अभियान लिया ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का, और मुझे खुशी है कि इन दिनों महिलाएं सामने से आकर के अपने विषय में चेकअप करा, पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। दूसरा एक अच्छा अनुभव आया, अभी तो एक दिन में मैक्सिमम लोगों का चेकिंग करने का ग्रीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने रजिस्टर किया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए बच्चों को कक्षा से बाहर ले जाने और उन्हें वास्तविक जीवन के कौशल तथा विभिन्न कार्यों से जोड़ने के महत्व पर जोर दिया। गृह मंत्री अमित शाह, शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिक्षक दिवस के अवसर पर देशवासियों और शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि शिक्षक पीढ़ियों से विद्यार्थियों को ज्ञान की राह दिखा रहे हैं और देश की निरंतर प्रगति में योगदान दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक वीडियो संदेश में कहा कि शिक्षक ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास के साथ छात्रों के भविष्य को सशक्त बनाते हैं।
2: इन शिक्षकों ने अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग तरीकों

0: खबरों से जुड़े रहिए एक्स पर @AIRNewsHindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई ज्ञान कौशल और आत्मविश्वास के साथ छात्रों के भविष्य को सशक्त बनाते हैं।
2: इन शिक्षकों ने अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग तरीकों
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई

0: और बढ़ते आर्थिक दबावों का सामना कर रही है। हॉर्मुस जलडमरू मध्य में व्यवधान के कारण खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतें भी चिंता का विषय बनी हुई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित त्रिशूली बाजार क्षेत्र से 5 वर्षीय बच्चे सहित 3 और भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इससे शरणार्थियों की कुल संख्या 169 हो गई है। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं, वहीं 1907 भारतीय चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास इन शरणार्थियों को हवाई मार्ग से वापस लाने में सहायता कर रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय यात्री फंसा हुआ नहीं है। प्रवक्ता ने बताया कि 26 अगस्त को विनाशकारी बाढ़ के बाद से भारत ने नेपाल को लगभग 95 टन राहत सामग्री भेजी है। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार सहायता जारी रखेगा। आने वाले दिनों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर अधिक फॉरेंसिक किट, बेली ब्रिज और अतिरिक्त सामग्री भेजने की योजना बना रहा है। बेली ब्रिज पूर्व निर्मित और मॉड्यूलर स्टील पुल होता है, जिसे कम समय में और बिना भारी मशीनों के आसानी से जोड़ा या स्थापित किया जा सकता है। इस बीच नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है। खोज और बचाव अभियान जारी है। लगभग 5000 लोग अभी भी लापता हैं। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने तेलंगाना में एक महिला मंत्री को हटाए जाने को अन्यायपूर्ण बताया है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में डॉक्टर त्रिवेदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की चुप्पी पर सवाल उठाया। झारखंड में प्रश्न पत्र लीक का उल्लेख करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि ये सिर्फ प्रश्न पत्र लीक नहीं बल्कि प्रश्न पत्रों की लूट थी।
2: जो कुछ झारखंड में तथ्य प्रकाश में आया है उसने यह साफ किया है कि ये पेपर लीक नहीं

0: एशियाई जोड़ी नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी कियोंग से खेलेगी। भारतीय जोड़ी ने कल क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रास्मुसेन को हराया था। एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा। महाराष्ट्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ा दही हांडी उत्सव आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मुंबई और आसपास के जिलों में भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा पारंपरिक उत्सव दही हांडी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस आयोजन में युवा प्रतिभागी मानव पिरामिड बनाकर ऊंचाई पर लटके दही, दूध या मक्खन से भरी मटकी फोड़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 160,000 गोविंदाओं के बीमा कवरेज की व्यवस्था भी की है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विकसित भारत का सपना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से ही साकार होगा। उन्होंने 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव अभियान जारी। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को 95 टन राहत सामग्री भेजी और अधिक राहत सामग्री के साथ बिलीब्रिज भेजे जाएंगे। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशियाई जोड़ी से होगा। और टी20 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज रात भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी।

आशियाना फिल्म का गीत अभी आपने सुना, नीरज के बोल थे और हरी अर्जुन का संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती से इस वक्त कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला पत्र है, किस्मत फिल्म का गीत ये सुनना चाहते हैं। काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरेशी सुरोशी, सुषमा निधेश परिधि और मायरा सुरोशी। साथ ही फरमाइश करता है, उल्हास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति और चेतन शामतकर। साथ ही रामलीला मैदान से हैं बाबा श्री शिवानंद त्रिपाठी, शशि त्रिपाठी, शिवांश, मंजू, विजय मिश्रा, गोविंदा, सोहू, अमन पीए और अभिजीत सिंह सांगा। और साथी घंटाघर चौक खंडवासी संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। और इसी के साथ मॉडर्न टाउन करनाल से सुधीर नूतन, माया कुमार और सुनीता शर्मा ने फरमाइश की है इस गीत की, जिसे फिल्म किस्मत से हमने

मनचा ही गीत कार्यक्रम में अगला पत्र हम शामिल करने जा रहे हैं। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या हेमलता डिंपल देवांगन का, साथ ही श्री केदारनाथ सोसाइटी से रवि भाई सिसोदिया, मुन्ना भाई गीताबा, धर्मराज करणराज सिसोदिया परिवार और किशोर गुप्ता दस्तूर नगर छतरी तालाब रोड अमरावती से, और साथ ही रविकांत गुप्ता, श्रीमती किरण गुप्ता और आशीष साथी सुप्रिया ने हमें फरमाइश भेजी है मेरे जीवन साथी फिल्म के इस गीत की, जिसे गाया है किशोर कुमार ने, लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने। लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

अगला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं इसकी फरमाइश की है हमारे श्रोता जिन्होंने भाटापाड़ा से हमें ये पत्र लिखा है, हरमिंदर चावला, सोहन जोशी, शिव कुमार शर्मा, त्रिशमन कौर चावला और गुरु फतेह सिंह, साथ ही लक्ष्मण बागवानी, श्रीमती विमला बागवानी, श्रीमती दिशा बागवानी, ये श्री झूलेलाल कॉलोनी रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, साथ ही मास्टर हर्ष व खुशी वाधवानी और शंकर नगर दुर्ग से मनिक सिंह बैस, कावेरी वनिता, लल्ली लेखमणि बैस और साथ ही ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, सचित और कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख करड़ा सिरोड रिसोर्ट से, कुमारी सानवी देशमुख और कुमार सरबद देशमुख ये गीत सुनना चाह रहे हैं संबंध फिल्म का आशा भोसले की आवाज में।

कार्यक्रम का आखिरी गीत अब आपको सुनवाएंगे हम। पत्र लिखा है प्रकाश दादा जैन, सूरज संगीता जैन और पीआर जैन ने, साथ ही सोनाली पथिक, कृष्ण आशा नारंग और सुरेश नारंग ने, और ग्राम सालियाखेड़ी आमर मालवा आगर मालवा मध्य प्रदेश से सोनू विश्वकर्मा और मोनू विश्वकर्मा ने, मैसवाड़ी मलकापुर से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीक नीना जी स्वप्निल और अजय स्वप्निल धाड़े और अजय खिरोड़कर ने ये गीत सुनना चाहते हैं। प्यार किए जा फिल्म का लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम मन चाहे गीत ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होने जा रहा है। कार्यक्रम में सहयोग चंचल वर्मा और आकांक्षा विश्वकर्मा का था। प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले।

0: नाट्य तरंग। आज इस कार्यक्रम में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बांग्ला उपन्यास चोखेर बाली का रेडियो नाट्य रूपांतरण आप सुनेंगे, आंख की किरकिरी। रूपांतरकार एवं निर्देशक नंदलाल शर्मा। प्रस्तुत है आंख की किरकिरी इस नाटक का पहला भाग।
1: मैं हूं महेंद्र, बचपन से ही उच्चांकित रहा हूं। मैं अपनी इच्छा पर दूसरे का अंकुश सहन नहीं कर सकता। घर में मैं हूं, मेरी माँ राजलक्ष्मी है और काकी अन्नपूर्णा। इसके अलावा मेरा बचपन का परम मित्र बिहारी। हाँ,
2: मैं महेंद्र का परम मित्र हूं। वैसे मेरा कोई नहीं है, महेंद्र की माँ को ही अपनी माँ समझता हूँ और अन्नपूर्णा काकी को काकी। काकी साक्षात देवी है, मैं उनकी भक्ति करता हूँ। शादी के लिए काकी की भांजी आशा को मैं देखने गया। लड़की सुंदर और सुशील थी। लड़की देखने महेंद्र भी मेरे साथ गया था। बात पक्की हो गई, लेकिन भाग्य की विडंबना देखिए
3: कि हमारी शादी महेंद्र के साथ हो गई। वैसे हमारे पति की शादी हमारी सास की सहेली की लड़की विनोदनी से होने वाली थी,
4: लेकिन मेरा ऐसा भाग्य कहाँ था। शादी से ही 4 दिन पहले उन्होंने इनकार कर दिया। फिर बिहारी से शादी की बात चली, लेकिन और फिर मजबूरी में मेरी शादी एक रोगी व्यक्ति से हो गई। और कुछ दिनों बाद वो चल बसी। एक बार महेंद्र की माँ अपनी मायके आई, वहीं उन्हें मैं मिल गई। उनके साथ बिहारी भी था। जब कलकत्ता लौटने लगी तो मुझे भी अपने घर ले आई। घर का सारा काम मैं स्वयं करने लगी तो महेंद्र की पत्नी आशा अपने आप को मेरे सामने छोटा समझने लगी, मुझसे दूर दूर रहने लगी। लेकिन थोड़े ही समय में हम सहेलियां बन गई। अब आशा, महेंद्र और मेरी सभा रोज ही जमने लगी। लेकिन घर के कामकाज में मैंने किसी प्रकार की शिथिलता नहीं आने दी। रसोई पानी, कामकाज, माँ की सेवा सब करने के बाद ही मैं आमोद प्रमोद में सम्मिलित होती थी। मुझे इतना काम करते देख महेंद्र कहता,
5: दास दासियों से काम न लेकर तुम उन्हें मिट्टी कर दोगे।
4: अरे काम न करके स्वयं मिट्टी होने से तो अच्छा ही है। जाओ, तुम कॉलेज जाओ।
5: लेकिन आज इस मौसम में?
4: नहीं नहीं, ये नहीं होगा। गाड़ी तैयार है, कॉलेज जाना ही पड़ेगा।
5: सच विनोद, तुमने आकर इस घर की काया ही पलट कर दी। घर का नक्शा ही बदल गया। कपड़े यथास्थान पर तैयार, हर जगह तुम्हारी सेवा का अनुभव करता हूँ। आशा को तो किसी काम का शऊर ही नहीं।
4: अरे हाँ, बिहारी बाबू बहुत दिनों से नहीं आए।
5: हाँ, मैं तो भूल ही गया था। बिहारी ने मुझे लिखकर सूचित किया था कि रविवार को माँ के हाथ का भोजन करेगा, लेकिन मैंने उत्तर लिख दिया कि रविवार को मुझे विशेष कार्य से बाहर जाना है।
4: तुमने ऐसा क्यों लिखा?
5: अरे उसके आने पर अपना रविवार मिट्टी हो जाता।
6: अरे महेंद्र, शंभू से मालूम हुआ कि तुम बाहर नहीं गए, घर में ही हो।
5: हाँ, वो तबीयत ठीक नहीं, इसलिए बाहर नहीं जा सका। वो सर में बहुत दर्द है। बैठो बिहारी।
4: तुम बहुत देर से बैठे हो, लाओ सर में बाम लगा देती हूँ।
5: नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है।
4: अरे लेटो भी, मैं लगा देती हूँ। लेटो भी, लेटो।
5: अच्छा,
4: कुछ आराम मिल रहा है?
6: अरे विनोद भाभी, ऐसी सेवा टहल होने पर तो रोग घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा।
4: हम मूर्ख स्त्रियां इसे क्या जाने। आप लोगों के डॉक्टरी शास्त्र में कदाचित ऐसा ही

0: लिखा होगा।
1: ठीक तो है। अरे ये सेवा देखकर तो मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, किंतु मेरे जैसे अभागे कपाल को बिना चिकित्सा के ही चटपट ठीक हो जाना पड़ता है। महेंद्र भैया के सिर में जोर अधिक है।
0: मुझे क्या आवश्यकता है, मित्र ही मित्र की चिकित्सा करें।
1: ठीक है, मित्र की चिकित्सा मित्र ही करेगा। मैं ही सरदर्द लाया हूं, मैं ही इसे साथ ले जाऊंगा। औषधि द्वारा बीमारी दूर करने की अपेक्षा बीमारी होने न देना ही अच्छा है। अच्छा मैं चलता हूं। अब दूर रहने से काम नहीं चलेगा, जैसे भी हो मुझे इनमें शामिल होना ही पड़ेगा। कई दिनों से पढ़ाई में व्यस्त रहने के कारण मैं इधर नहीं आ सका। मुझे क्या मालूम था कि इस बीच मामला यहां तक बढ़ गया है। नहीं नहीं, अब इनसे दूर रहने से काम नहीं चलेगा, अब इनसे दूर रहने से काम नहीं चलेगा।
0: मालूम होता है बिहारी बाबू को यह सब अच्छा नहीं लग रहा। जब मैं महेंद्र के सर पर बाम लगा रही थी, बिहारी बाबू की आंखों में मैंने देखा कि वे मानो ये अभिनय देखकर मुस्कुरा रही थी। मालूम होता है इस आदमी को धोखा देना कोई सरल काम नहीं, कुछ भी उसकी दृष्टि से छिपा नहीं रह सकता। ओह, यहां क्यों आई?
1: विनोद भाभी, इस लड़के को इसकी माँ ने मिट्टी किया, अब स्त्री कर रही है। तुम वैसा ना करके एक नया रास्ता दिखाओ।
2: अर्थात
1: मेरे जैसे आदमी को जिसे कोई कभी पूछता नहीं,
2: उससे मिट्टी करो। हम मिट्टी होने की उम्मीदवारी इतनी सरल नहीं है बिहारी, सिर्फ दरख्वास्त देने से ही काम नहीं हो जाता।
0: मिट्टी होने की क्षमता भी तो होनी चाहिए बिहारी बाबू।
1: वो तो अपना गुंडा होने पर भी दूसरे का हाथ लगने से आ जाती है।
0: बहन किरकिरी, भाई अपने इस देवर का भार अब तुम ही ले लो। बहन, तुम्हारा ये भिक्षुक देवर मेरी आड़ में तुम्ही से मान की भिक्षा मांगने आया है, अरे कुछ दे दे।
3: हम जाते हैं।
1: वाह भाई वाह, मेरी बारी में बातें दूसरों पर टाल दी जाती हैं, किंतु महेंद्र के साथ नकद कारोबार होता है।
2: बिहारी, ये तू क्या पक रहा है?
1: ठीक है, मैं चलता हूँ।
0: अरे रे रे रे, आप निराश होकर न जाइए बिहारी बाबू, मैं अभी किरकिरी को भेज देती हूँ।
1: महिंदा, तुम अपना सर्वनाश करना चाहती हो तो करो, किंतु जो सरल हृदय साध्वी तुम पर पूर्ण विश्वास रखती है उसका सर्वनाश ना करो। अब भी कहता हूँ, उसका सर्वनाश ना करना।
2: पहेली मत पूछाओ बिहारी, जो कुछ कहना है साफ साफ कहो।
1: साफ ही कहूंगा। महिंदा, विनोद ने तुम्हें जान बूझ कर अधर्म की ओर ले जा रही है और तुम ना समझकर कुमार की ओर बढ़े जा रहे हो।
2: बिल्कुल झूठ। यदि तुम किसी भद्र महिला को ऐसी संदेह भरी दृष्टि से देखते हो तो अंतःपुर में तुम्हारा आना ही ठीक नहीं।
1: ठीक है, मैं जाता हूं।

0: बेटी तू अपना भी ख्याल रखा कर। अरे जब से मैं बीमार हुई हूँ तू हर समय मेरी ही सेवा में लगी रहती है।
1: अरे क्या हुआ माँ, मुझे तुम्हारी सेवा करने में कितना आनंद मिलता है।
0: अरे वही तो तुझ में विशेषता है री, जब भी तुझ पर कोई काम आ पड़ता है तो तू उस काम को करने में इतनी तल्लीन हो जाती है कि किसी और ध्यान नहीं देती। काश तुम मेरी बहू होती।
1: माँ आप ज्यादा न भूलें, आराम करें।
2: चुन्नी मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ कि मेरे नहाने से पहले मेरे कपड़े तैयार कर दिया करो, पर एक दिन भी तुमने ऐसा नहीं किया, इससे कितना समय बर्बाद होता है।
3: पर हमने तो नौकर से कह दिया था।
2: नौकर से कह दिया था, अपने हाथ से नहीं कर सकती थी। तुमसे तो किसी काम की आशा करना ही व्यर्थ है, तुम कुछ भी नहीं समझती कैसे क्या करना चाहिए। कमरे की हालत देखी है, हर चीज बेतरतीब है।
3: तुम हमें

0: तरह रखो, दंड दो, पर अपने चरणों की सेवा के योग्य बना लो।
1: चुन्नी, चुन्नी मुझसे अपराध हुआ है, मुझे मुझे क्षमा कर दो चुन्नी।
0: नहीं, ऐसा न कहो, तुमने कोई अपराध नहीं किया, सब दोष हमारा है।
1: चुन्नी, मेरी हृदय मणि चुन्नी, मैं हृदय में सबसे ऊपर तुम्हें रखूंगा। अरे हाँ, कॉलेज में कल से हमारी नाइट ड्यूटी पड़ रही है, इसलिए वहां मैस में रहना पड़ेगा।
0: सुनो, हमारी एक प्रार्थना है।
1: कहो।
0: तुम हमें रोज एक चिट्ठी भेजा करोगे?
1: और तुम भी?
0: चलो हटो, हमें क्या लिखना आता है।

माँ को प्रणाम करके मुझसे बगैर मिले ही चले गए। मैस में जाकर रहेंगे, दिखाना चाहते हैं कि मेरी परवाह नहीं करते। महेंद्र, आशा के प्रति तुम्हारा प्रेम मेरे प्रणय वंचित चित्त को हमेशा ही बाधा करता है। मुझ जैसी स्त्री रत्न की उपेक्षा करके तुमने आशा जैसी क्षीण बुद्धिहीन बालिका का वरण किया। महेंद्र, तुमने मेरे अंतर में एक आग सुलगा दी है। मैं तुम्हें दंड दूं या हृदय समर्पण कर दूं? ये आग हिंसा की है क्या प्रेम की? बच्चा ही जिस कारण भी हो, चलने के लिए क्या चलाने के लिए मुझे महेंद्र की जरूरत है। हाँ, मुझे उनकी जरूरत है, मुझे उनकी जरूरत है। वो जाएंगे कहाँ जाएंगे? वो उन्हें लौटना ही होगा। वो मेरे हैं।

0: उन्हें गए कितने दिन हो गए, लेकिन उनकी चिट्ठी नहीं आई। क्या क्या अभी भी वो हमसे गुस्सा है? उन्हें क्या मालूम हम अपनी हर शाम उनकी चीजों को स्पर्श करके काटा करते हैं। हमने तो उनसे प्रार्थना भी की थी कि हर रोज हमें चिट्ठी भेजा करना।
1: क्यों यहाँ चुपचाप अकेले में क्यों उनकी याद से बातें हो रही हैं?
0: बहन देखो ना, हमसे कहकर गए थे कि हमें रोज चिट्ठी लिखा करेंगे, पर उनकी कोई चिट्ठी नहीं आई। हमें डर लगता है कहीं वो हमसे गुस्सा।
1: अरे रे, रोते नहीं, हो सकता है कि वो ये सोच रहे हो आशा ने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी।
0: हमें लिखना नहीं आता बहन। हाँ, हमारी तरफ से तुम चिट्ठी लिख दो ना।
1: अरे इसमें सोचना क्या है, जो दिल में आए वो लिख दो।
0: अब हम चलते हैं।
1: ये क्या बिहारी बाबू, क्या आप बीमार हैं?
2: नहीं तो।
1: तू दोनों आंखें सुर्ख क्यों हैं?
2: अरे हाँ विनोद भाभी, महेंद्र कहाँ गया?
1: कॉलेज में विशेष काम है ऐसा कह के गए हैं।
2: विनोद भाभी तुम आशा की देखभाल करना। आशा इतनी सरला है कि किसी को चोट पहुंचाना नहीं जानती, यहां तक कि आघात से अपनी रक्षा करना भी नहीं जानती।
1: आप निश्चिंत रहें बिहारी बाबू, मेरी आंख की किरकिरी के लिए चिंता करके अपने आप को अधिक कष्ट न दें।
2: अच्छा मैं चलता हूं।
1: आशा के लिए बिहारी बाबू का हृदय कितना व्यथित है। महेंद्र ने आशा से विवाह किया, उस आशा से जिसके साथ बिहारी की बात पक्की हुई थी, वो ही बिहारी बाबू।

0: बापू, आशा की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। वो चाहते हैं कि विनोदिनी हमेशा आशा के आंसू पूछने के लिए तैयार रहे। ऐसा लगता है जैसे मैंने इसीलिए जन्म लिया है कि मैं आशा के रास्ते के कांटे चुनूं, आशा के सुख में जरा भी कमी ना आने दूं। लेकिन नहीं, मैं एक बार इस महेंद्र को, इस बिहारी को धूल में गिराना चाहती हूं। या तो आशा ही रहेगी या विनोदिनी।
1: इतने दिनों के बाद आशा की चिट्ठी आई है। आशा, मेरी आशा, जरा पढ़ूं तो आशा ने क्या लिखा है।
2: प्रियतम, जिसे भूलने के लिए चले गए हो, इस पत्र में उसकी याद क्यों दिलाऊं? तुम्हारी अवहेलना, उपेक्षा जो कांटे की तरह मेरी पसलियों में समा गई है, वो दिन रात सब कामकाज, सब चिंताओं के बीच मुझे बेथती रहती है। नाथ, हाँ नाथ, तुमने जो मुझसे प्रेम किया वो क्या मेरा ही अपराध है? मैंने क्या स्वप्न में भी ऐसे सौभाग्य की आशा की थी? न जाने क्या देखकर तुमने मुझे इतना आदर दिया। लेकिन एक बात समझ न सकी कि घर में रहते हुए भी क्या तुम मुझे फेंक नहीं सकते थे? मेरे लिए भी क्या तुम्हें घर छोड़कर जाने की जरूरत थी? मैं क्या तुम्हें इस तरह पकड़े हुए हूं? मेरे लिए क्या कहीं जाने का रास्ता नहीं रह गया था? मैंने तो कई बार काम जाना चाहा, लेकिन मुझे रोक लिया गया, वरना मैं तो बह कर आई हूं, बह कर चली जाती।
1: ये चिट्ठी, समझा, आशा की आड़ लेकर विनोदनी ने चिट्ठी भेजी है। विनोदनी समझती है कि मैं उसे भूलने के लिए घर छोड़कर आया हूं। उसकी इस स्पर्धा को झूठ सिद्ध करने के लिए मुझे तुरंत ही घर लौटना चाहिए और अब से मैं विनोदनी से दूर ही रहूंगा। यहां लौटने से पहले मैंने सोचा था कि मैं विनोदनी से दूर रहूंगा, लेकिन ये स्वाभाविक स्थिति नहीं। सहज भाव से बातचीत करके इसे खत्म कर देना चाहिए।
0: बिहारी बाबू, न जाने महेंद्र बाबू को क्या हो गया है। मुझे अपनी किरकिरी के लिए बड़ी चिंता हो रही है। मैं तो सदा यहां रहूंगी नहीं, पर मेरे चले जाने के बाद तुम उसका ध्यान रखना, वो दुखी ना होने पाए।
3: भाभी, तुम्हें रहना ही पड़ेगा, तुम्हारा अपना कोई नहीं। तुम इस सरला बालिका की सुख दुख में रक्षा करने का भार अपने ऊपर ले लो।
0: लाला जी, मैं सदा यहां कैसे रहूंगी? लोग क्या कहेंगे?
3: लोग जो कहें कहने दो, तुम देवी हो। संसार के निष्ठुर आघात से बालिका की रक्षा करना तुम्हारे ही योग्य काम है। भाभी, पहले मैंने तुम्हें नहीं पहचाना था, मैंने भी संकीर्ण हृदय सामान्य लोगों की तरह तुम्हारे बारे में नीच धारणा बना ली थी कि तुम आशा के सुख से ईर्ष्या करती हो। किंतु बाद में तुम्हारे हृदय का परिचय मिला और तुम पर श्रद्धा हो गई। अच्छा, मैं चलता हूं।
2: सुनो, तुम तो काशी जाकर अपने काकी से मिला और उनका हमारे लिए दिया उपहार सिंदूर की डिब्बी भी ले आए। सुनो, हमें भी एक बार मौसी की चरण धूली लेने जाने दो ना।
1: चुन्नी, तुम्हें तुम्हारी पुण्यवती मौसी का आशीर्वाद है। वे तुम्हारे ही मंगल के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर चली गई। तुम्हारा कभी कोई अकल्याण नहीं हो सकता।
2: मौसी, तुम्हारा आशीर्वाद सदा मेरे स्वामी के साथ रहे। सुनो, क्या तुम मेरी

0: एक प्रार्थना पूरी करोगे? मुझे एक बार, सिर्फ एक बार उनसे मिलने जाने दो। वो मेरी ताई जी है ना, वो, हाँ वो मेरी ताई जी है ना, वो काशी जाने वाली है, उन्हीं के साथ मुझे भेज दो।
1: मैं अभी माँ से कहता हूँ। माँ, माँ।
2: क्या है बेटे?
1: माँ बहू काशी जाना चाहती है, मुझे कॉलेज में काम है, मैं नहीं जा सकूंगा। उसकी ताई जा रही है, उसी के साथ चली जाएगी।
2: हाँ जी, बड़ी अच्छी बात है, वो लोग बड़े आदमी ठहरे, उनके साथ जाने से हमारा गौरव बढ़ेगा ना।
1: महिंदा, महिंदा तुम साथ क्यों नहीं चले जाते?
3: मैं नहीं जा सकूंगा।
1: तो फिर साथ विनोद भाभी चली जाए तो कैसा रहेगा?
3: बिहारी, अपने मन की बात साफ साफ कहो, छल करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझ पर अंदर ही अंदर संदेह करते हो कि मैं विनोदनी से प्यार करता हूं। प्रेम मैं नहीं करता, बल्कि मैं तुम्हारे सामने कहता हूं कि तुम आशा से प्रेम करते।
1: महेंद्र, ईश्वर तुम्हें क्षमा करे। महेंद्र मैं जा रहा हूं।
0: लाला जी, लाला जी, किरकिरी के साथ मैं भी काशी जाऊंगी।
1: नाना भाभी, ये ना होगा। मैं यहां का कोई नहीं हूं, मैं किसी बात में हस्तक्षेप करना नहीं चाहता, इससे भला नहीं होगा। तुम देवी हो, तुम्हें जो अच्छा लगे करो। मैं चलती हूं।
0: लाला जी, मैं देवी नहीं हूं, मैं देवी नहीं हूं। तुम्हारे जाने से किसी का भला नहीं होगा, पीछे मुझे दोष मत देना।
4: समझ में नहीं आता, ऐसे स्पष्ट आरोप का भी प्रतिवाद बिहारी ने क्यों नहीं किया? पर अच्छा ही हुआ, इससे अब वो आशा से दूर चला गया। वो कई दिनों से यहां आए नहीं थे। महेंद्र ने जब कहा कि तुम आशा से प्रेम करते हो, तब उस समय बिहारी का चेहरा कैसा रक्तहीन हो गया था। मैंने बिहारी को एक पत्र लिखा, लाला जी उस दिन तुम्हारा शुष्क मुख देखने के बाद मैं निरंतर प्राण मन से कामना कर रही हूं कि तुम स्वस्थ हो जाओ, जैसे थे वैसे ही। वो सहज हंसी, वो उदार वाणी फिर कब सुनूंगी? एक पंक्ति लिखकर मुझे जता देना तुम कैसे हो। तुम्हारी विनोद भाभी।
3: विनोद की चिट्ठी लेकर दुर्बान बिहारी के यहां गया तो मालूम हुआ कि बिहारी रात की गाड़ी से पश्चिम की ओर चला गया है। जब दुर्बान चिट्ठी लेकर वापस लौट रहा था तो उसे मैं मिल गया। मैंने वो चिट्ठी उसे ले ली और पढ़ने लगा। समझ में नहीं आता कि विनोद के मन की गति किस ओर है। तो क्या मैं विनोदनी से प्रेम नहीं करता कहकर मैंने जो उसका तिरस्कार किया है उसी के कारण अभिमानवश मेरी आशा छोड़ दूसरी ओर जा रही है। वो मेरे अधिकार से अलग चली जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे उसे अपनी ओर खींचना ही होगा। हाँ, उसे अपनी ओर खींचना होगा, मुझे उसे अपनी ओर खींचना होगा।
1: व्यर्थ खड़ी हो, भेंट नहीं होगी। लो, तुम्हारी चिट्ठी लौट आई है, मैं जा रहा हूं।
0: लेकिन चिट्ठी खुली हुई क्यों है? मैं पूछती हूँ, चिट्ठी खुली हुई क्यों है?
4: समझी, बिहारी ने चिट्ठी खोली और पढ़कर वापस कर दी। बगैर एक पंक्ति लिखे मेरी चिट्ठी वापस कर दी। मैं अपने चारों ओर आग लगाकर सब भस्म कर दूंगी। मुझे सुख न मिला तो ना सही, लेकिन जिन्होंने मुझे कृतार्थता से भ्रष्ट किया है और समस्त संभावित संपदा से वंचित कर दिया, उन्हें परास्त कर धूल में मिला देने से ही मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। मेरे जीवन का उद्देश्य

0: बेटी देख रही हूँ कि महेंद्र आजकल बड़ा विक्षिप्त सा रहता है। शायद बहू के चले जाने के कारण उसे अच्छा नहीं लग रहा। अब मुझसे तो सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाया नहीं जाता। तू ही महेंद्र की देखभाल किया कर बेटी।
1: जरूरत क्या है माँ?
0: अच्छा अच्छा तब मुझसे ही जो कुछ हो सकेगा करूंगी। चलो जरा देखो तो उसे।
1: नहीं नहीं माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम मत जाओ, मैं जाती हूँ। जो तुम्हारी आज्ञा होगी करूंगी। कई दिन से तुम्हारे खाने पीने के समय हाजिर नहीं रह सकी, कोई गलती हो तो क्षमा करना।
2: कभी कभी ऐसी गलती का होना अच्छा है, क्योंकि बाद में ब्याज सहित वसूल किया जा सकता है।
1: महाजन बताएंगे कि ब्याज कितना हुआ।
2: खाने पीने के बाद हाजिरी को बात करके भी कुछ निकलेगा ही।
1: तुम्हारा हिसाब कितना कठोर है, जो एक बार तुम्हारे हाथ में पड़ गया उसका फिर उद्धार नहीं।
2: हिसाब जो है, पर अदायगी में क्या मिल पाएगा?
1: अदायगी लायक यहाँ है ही क्या, तब भी तो बंदी कर रखा है।
2: किरकिरी, क्या ये तुम्हारे लिए जेल खाना है?
1: कौन जाने, बाद में तुमसे कौन जीत सकता है। अच्छा जाती हूँ, काम बहुत है।
2: अच्छा बंधन स्वीकार किया है तो जाती कहाँ हो?
1: जी जी छोड़ो, जिसे भागने का कोई रास्ता नहीं उसे बांधने की चेष्टा क्यों।
3: अरे आशा, तू बेटी, महेंद्र तो मुझसे मिलकर गया ही था, फिर कुछ समय बाद तुम मेरे पास काशी चली आई। बेटी कहीं कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं? सच बता, सच बता, महेंद्र अच्छी तरह तो है ना?
4: नहीं मौसी, ऐसा कुछ भी नहीं, सब ठीक है।
3: हे भगवान, भगवान सदा तुम्हें सुखी रखे। अरे हाँ, बिहारी का क्या हाल है बेटी? वो क्या ब्याह करेगा ही नहीं? उसकी तबीयत तो ठीक है ना?
4: उनकी बात मुझसे न पूछो।
3: अरे बता तू, क्या बात है?
4: वो मैं न बता सकूंगी।
3: बेटी बेटी सुन तो, सुन तो चुन्नी। हे भगवान, सोने जैसा लड़का, प्यारी में ऐसा क्या परिवर्तन हो गया जो चुन्नी आज उसका नाम सुनकर उठ गई। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, इलाहाबाद से कुंजी की सास आने वाली थी, शायद शायद वो ही आ गई। चुन्नी, चुन्नी बेटी, लाल टेन लेकर नीचे जा और दरवाजा खोल दे।
4: अच्छा मौसी, खोलती हूँ।
1: हाँ।
2: भाभी जी, मैंने तो सुना था कि तुम काशी नहीं आओगी।
4: मौसी मौसी मौसी मौसी मौसी मौसी, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ मौसी, उन्हें अभी यहाँ से चले जाने को कह दीजिए।
3: किसे चुन्नी, किसे?
4: वो बिहारी लाला जी है ना, वो यहाँ भी आ गए मौसी।
3: अच्छा बिहारी, बिहारी बिहारी।
2: काकी, मैं तुम्हारे मंगल चरणों का आश्रय लेने आया था।
3: क्या?
2: बस कुछ न कहो, चलता हूं, प्रणाम।
4: सुनो, हम तुम्हें लिख रहे हैं। बिहारी लाला जी एकाएक आश्रम यहाँ चले आए थे, तुम जल्दी आकर हमें ले जाओ। थाउची के लौटने का भी कुछ नहीं, तुम जल्दी आकर हमें ले जाओ, हमें ले जाओ।
5: गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बांग्ला उपन्यास चोखेर बाली का

0: रेडियो नाट्य रूपांतरण आंख की किरकिरी का पहला भाग अभी आपने सुना। रूपांतरकार एवं निर्देशक नंदलाल शर्मा। ये हमारे आकाशवाणी जयपुर केंद्र की प्रस्तुति थी।
1: बॉम्बे टॉकीज,
2: साइंस, लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन।
3: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में पिछले हफ्ते आप सुन रहे थे दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत। आप सुन रहे थे दीपाली इंडियन आइडल और अपने बचपन की बातें साझा कर रही थी और समय सीमा के तहत इस बातचीत को विराम देना पड़ा। तो आइए आज सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा भाग।
4: ये जो भंवर वाला दौर था, झंझावात वाला दौर था, इससे निकलकर किसी फैसले पर दीपाली कैसे पहुंची?
5: हुआ ये कि जब हम वापस लैंड किए पटना एयरपोर्ट पे, तो काफी भीड़ आ गई थी एयरपोर्ट पे, मीडिया वाले सारे, पत्रकार और माइक्स और कैमरास। मेरे माता पिता पहली बार ऐसा देख रहे थे कुछ, क्योंकि अभी जो बेटी कुछ महीने पहले बंबई गई थी वो लौटी है, तो वो मेरी बेटी नहीं है, पूरे बिहार की बेटी के नाम से ये अब सिर्फ मेरी धरोहर नहीं है
4: जी।
5: और जब हम एयरपोर्ट पे उतरे तो मेरे पापा से सब पूछने लगे, अगला क्या, व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि जीवन में यही सत्य है, जो आपने पा लिया हो गया, उसको एंजॉय करने का हक इंसानों के अंदर वो संस्कार ही नहीं डाला गया है कि जो है
4: अब आगे क्या,
5: आगे क्या।
4: खुद को भी अभी तक ये पूरा स्वीकार नहीं हो रहा है मन को।
5: करेक्ट। और ये इंसानों की फितरत है, मतलब हम इसको, ये नहीं बदली जा सकती है, ये किसी एजुकेशन सिस्टम से भी नहीं बदला जा सकता, किसी संस्कार से भी नहीं बदला जा सकता, इसको कई करोड़ों जन्म लगेंगे कि जो आया है उसको जीना पूरी तरह से, जो स्थिति है चाहे खुशी हो चाहे गम हो उसको पूरी तरह से जीने दो। अगला क्या जो सवाल है, ये बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी इससे गुजरना। और तब उस वक्त जब अभी अभी किसी की मृत्यु हुई है और पूछे आप अगला क्या, वैसा महसूस होता है, क्या मतलब क्या अगला क्या। पर मेरे पिताजी, दीपाली बिहार से पहली लड़की थे हम जो इंडियन आइडल में गए थे, तो मेरे पिताजी को काफी प्रेशर आया, उनको ये पहले देख के वो बिल्कुल, हमको ऐसा हमको लगता है कि वो एकदम भौचक हो गए होंगे।
4: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
5: क्योंकि ये पहली बार हो रहा था कि ऐसे मेरी बेटी एयरपोर्ट, एक तो फ्लाइट वाले हम थे नहीं, हम ट्रेन वाले लोग थे, हम फ्लाइट से उतर के, क्योंकि इंडियन आइडल वालों ने फ्लाइट से भेजा है, और मेरे पिताजी, इतनी मीडिया, इतने लोग, कुछ 200-250 लोग आ गए थे, फूल माला, और बच्चियां ऑटोग्राफ लेना चाहती थी, मेरे घर पे लड़के आते थे बाइक से और फूल फेंक के जाते थे। ये स्थिति जब हम मुंबई में चल रहा था तो ये स्थिति होने लगी थी पटना में। मेरे साइज का बुके आता था घर पे, मेरे साइज के सॉफ्ट टॉयज आने लगे थे, अखबार में छपने लगा कि दीपाली का फेवरेट मिठाई कौन सा है, तो वो लोग लेके घर आते थे इस उम्मीद पे कि दीपाली से मिलना हो जाएगा। तो इतना प्यार देख के अब तक मेरे पापा जो थे वो बैकफुट पे खेल रहे थे जीवन में, क्योंकि बिहार में पापा मेरे पुलिस वाले थे, उनके पास ज्यादा समय नहीं था। और हमको जो असल में जो मेरे पिता का रोल प्ले करते थे वो थे मेरे चाचा, मेरे जिनको हम बाबूजी बोलते थे।
4: अच्छा।
5: बाबूजी ही हम लोगों को, मेरा म्यूजिक स्कूल लेके जाना आना बाबूजी ही सब कुछ करते। बट जब ये दौर हुआ जहां पर अब हम बाहर जा रहे हैं, तो मेरे पिताजी फ्रंट फुट पे आए एयरपोर्ट पे और बोले दीपाली कुछ ही महीने में अब मुंबई शिफ्ट हो जाएगी और वहां जाकर हिंदी फिल्मों में गाना गाने की कोशिश करेगी।
4: उन्होंने एकदम बोल दिया,
5: पब्लिकली अनाउंस कर दिया। और घर आने के बाद मेरे पापा मम्मी की हो गई लड़ाई।
4: हाँ।
5: आपने ऐसा किस बेसिस पे बोल दिया, अब तो आ गई थी ना वापस, हम तो कभी नहीं चाहते थे कि ये मुंबई जाए, हमको बहुत डर लगता है उस जगह से, हम तो चाह रहे थे कि ये पढ़ लिख के आईपीएस बन जाएगी, अभी भी छोटी है, अब तो शुरू हुआ है इसका, अब हार गई तो चलिए इसका भी शौक पूरा हो गया, इसको इंडियन आइडल में जाना था, हो गया ना, पूरा कर ली ना, टॉप 7 में आ गई, हो गया अब पढ़ाई करो। लेकिन अब हमको भी तो चस्का लग गया था ना, ये दुनिया हमने देख ली थी आंख से, हमने महसूस कर लिया था यहाँ जी के, ये जीवन तो हमको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो पापा बोले कि नहीं, हम लोग तो अब तो भेजना ही पड़ेगा इसके, मुंबई बहुत महंगा शहर है, ये तो मेरे माँ बाप को अंदाजा लग गया था। उस वक्त उन्होंने अपने जो भी जमा पूंजी थी थोड़ी सी, उसको तोड़ा दो महीने बाद मेरे साथ मेरे पापा मम्मी मुंबई आए, मेरे लिए एक जगह देखी गई जहाँ पे हम रह सके। क्योंकि तब क्या होता है, तब शोज होने शुरू हो जाते हैं, आप ट्रैवल करने लगते हैं, तो पटना से बहुत फ्लाइट्स नहीं होती थी तब बहुत कम फ्लाइट्स होती थी, तो मुंबई रहना

0: जरूरी था, क्योंकि हर 10वें दिन या एक हफ्ते में एक बार आप फ्लाई कर रहे हैं, कहीं शो करने जा रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: पर हम लोग इतने भोले थे कि हमें ये नहीं पता था कि ये जो शोज होते हैं इसके पैसे कमाते हैं हम लोग। ये नहीं जानते थे हम। बेचारे पापा मेरे अपना जमा पूंजी तोड़ के और उसमें से हमको लेके मुंबई पहुंचे, एक छोटी सी जगह ढूंढी, रखा वहां पे, और अकेले रह नहीं सकते थे, बहुत छोटी बच्ची थी वो, 18 साल की दीपाली, तो उसको एक पीजी में रखा गया जहाँ पे दो और लड़कियां कमरा शेयर करती थी। बैंड्रा में एक पीजी में रहना शुरू किया। और एक दिन अचानक ऑफिस से फोन आया कि आप, और शोज होने लगे मुंबई में, शोज होने लगे, और एक दिन अचानक से ऑफिस से फोन आया कि आप आइए और अपना चेक लेके जाइए। तो हमें पता नहीं था चेक क्या, चेक तो गए तो पता चला जितने भी हमने स्टेज शोज किए थे अब तक उसके पैसे मिलते हैं,
1: और वो अच्छी रकम थी,
0: और वो बहुत अच्छी रकम थी।
1: आंखें एकदम,
0: खेल तो वहां से पलट गया सर।
1: हाँ।
0: ये रकम तो हम कैसे समझाएं कि
1: बिल्कुल
0: ये क्या हो गया था। कुछ समय के लिए जब पहली बार चेक मिला और हम बाहर ऑफिस के बाहर निकल के पापा को जब चेक बताए जो अमाउंट था उस पे जो अमाउंट लिखा था वो हम पढ़े भी नहीं, क्योंकि हमको लगा वो तो पॉसिबल ही नहीं है। हमने कुछ हजारों में अमाउंट बताया पर वो कुछ लाखों में था। ये स्थिति थी, जीवन वहां से पलट गया मेरा। दैट फर्स्ट चेक गेव मी द कॉन्फिडेंस कि अब हमको मेरे माँ बाप के ऊपर जो प्रेशर है, हमको बहुत हर, हमको लगता है कि बेटियों को ऐसे ऐसे पाला जाता है कि समाज कर देता है, माँ बाप
1: थोड़े में खुश रहना,
0: वो संतोषी पैदा ही संतोषी होती है, पैदा होंगी और नहीं तो समाज बना देगा कि भाई तो बहुत बड़ी बात है कि तुम्हारे पापा तुमको पढ़ने भेज रहे हैं, इतने में ही खुश है बेटी, हाँ ये बात तो सही है पापा पढ़ने तो भेज रहे हैं। तो मेरे अंदर एक बहुत गिल्ट फील होता था कि मेरे पापा को इतना, मेरे पापा मेहनत करते हैं हम और हमको, मेरे पर सारा खर्चा कर देंगे, दीदी को भी पढ़ाना है तो कैसे होगा। लेकिन वो चेक वो जीवन में एक दूसरी दीपाली को लेकर आया बाहर,
1: और उसके बाद वो एक अलग उड़ान शुरू हुई,
0: एक अलग उड़ान शुरू हो गई।
1: लगातार शोज हो रहे थे और हर शोज में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था,
0: बढ़ रहा था, और इंडियन आइडल ने तब तक अप्रोच कर दिया कि आप इसे होस्ट करिए।
1: हाँ हाँ।
0: तो जो पिछले साल जो लड़की कानपुर के एक लाइन में खड़ी थी जिस शो में एक हिस्सा बनने के लिए, इस साल वो लड़की उस शो को होस्ट करने जा रही थी।
1: बिल्कुल।
0: तो अब वो लड़की वो थी ही नहीं जो दीपाली पैदा हुई थी पटना में।
1: हाँ।
0: वहां से खेल बदलने लगा, कॉन्फिडेंस भी बदलने लगा।
1: बिल्कुल। यहाँ कामयाबी भी आ रही थी, काम भी आ रहा था, और जिंदगी बहुत कुछ सिखा रही थी। परिस्थितियों के मुताबिक बदलना, अपने आप को संभालना। यहाँ मैं आगे की बातचीत करने से पहले एक गाने का जिक्र करना चाहता हूँ, गंगा मैया तो है पीरी चढ़े हुए गुजाना, जो आप गाती हैं बहुत सारा। पहले वो गाना सुनते हैं, उसके बाद आगे की यात्रा की बात करते हैं।
0: बिल्कुल। हाँ।

0: क्या बात है, ये गाना तो जैसे हमारी संस्कृति का
1: हिस्सा
0: बन चुका है, हमारे मानस का हिस्सा बन चुका है। मुझे याद है कि जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो ये कहा जाता था कि पहले बनारस जाओ, गंगा में डुबकी लगाओ, गंगा मैया देखो, फिर गांव वापस आओ।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: तो ये एक पूरा एक दौर था जब इस फिल्म को लेके दीवानगी थी। ये गाना सुनते हैं।

0: तो ये गाना हमने सुना गंगा मैया तो है पीले चढ़े बो, और बिहारी लड़की यहाँ आते आते अभिनय के मैदान में भी उतरने वाली है, ये कैसे हुआ है?
1: ये गजेंद्र सिंह जो है, हाँ, जो सारे गामा
0: जो उसके प्रोड्यूसर थे,
1: डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, उनका अचानक एक दिन फोन आया। उस समय भोजपुरी का एक नया चैनल लॉन्च हुआ था और उन लोगों को नए शोज बनाने थे और
0: बड़े धूमधाम धाम तरीके से शुरू हुआ,
1: बहुत धड़ाम, मतलब बम्बई में बहुत बड़ा ऑफिस था भोजपुरी चैनल होने के बाद भी जितना बड़ा उनका ऑफिस था, हिंदी वाले भी दंग रहते थे कि ये क्या चल रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उस वक्त का जो दौर था,
0: सीरियल बनने लगे, रियलिटी शो बनने लगे, जाने क्या क्या हो रहा था।
1: तो ये उन्होंने गजेंद्र सिंह ने ही एक दिन फोन किया, और ये वो गजेंद्र सिंह है जो दीपाली के दिमाग में सारे गामा के डायरेक्टर है, जो जिनको सोनू निगम एक जमाने में होस्ट करते थे और हम बचपन में देखा करते थे। तो फोन आया कि गजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, तो मेरा रिएक्शन ऐसा था, अच्छी बात है, ओके बाय, क्योंकि हमको विश्वास नहीं हुआ कि खुद गजेंद्र सिंह ने फोन किया। फिर दोबारा कॉल आया, दीपाली मैं गजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, साईं बाबा प्रोडक्शन, सारे गामा। जब उन्होंने अपना परिचय दिया तब हमको समझ आया कि अरे ये तो असली वाले गजेंद्र सिंह है। तो हम बोले हाँ जी सर, हाँ जी जी सर, बोलिए। तो हम एक शो बना रहे हैं भोजपुरी में है, तो हम चाहते हैं कि तुम उसमें एक्टिंग करो। बोले सर हमको एक्टिंग नहीं आती है। तो बोले वो तुम्हारा काम नहीं है डिसाइड करना, तुम्हारा काम है हाँ बोलना, तुमको आती है कि नहीं आती है ये तो डायरेक्टर बताएगा, हम बताएंगे, तुमसे कराएंगे, हम करा लेंगे, हमको पता है। एंड दैट्स हाउ दिस बड़की मलकाई नाम था इस सीरियल का, ये शुरू हुआ मेरे जीवन में। और एक्टिंग का हमको सच में, मतलब ठीक है कि मूड इंडिगो में हम लोगों को फर्स्ट प्राइज मिल गया था, बट ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम बहुत अच्छा एक्टिंग कर लेंगे। बट क्योंकि उस जमाने में बहुत अच्छे पैसे थे, हमको ये भी नहीं पता था कि पर डे बेसिस पे सीरियल में पेमेंट होते हैं, सो आई थॉट कि इट्स अ वेरी गुड आइडिया। और हुआ क्या कि इंडियन आइडल में मेरे ना वोकल कॉर्ड्स फट गए चिल्लाने की वजह से। तो एक बहुत बड़े डॉक्टर थे यहाँ पे, उन्होंने बोला कि अब तुम जीवन भर कभी गा नहीं सको, तो तुम गाना तो भूल ही जाओ, ये तुम्हारा करियर यहाँ पे गाने का खत्म होता है। और मेरे वोकल कॉर्ड्स का जो उस समय जो एक वो लैरिंजियोग्राफी या कुछ कहते हैं उसको, उसके पिक्चर्स देखे उन्होंने, तो पिक्चर्स में वोकल कॉर्ड्स लिटरली फट चुके थे और खून बह चुका था, पूरा रेड सोर रेड था मेरा वोकल कॉर्ड। तो हम भी डर गए, हमको लगा कि तो वो ही

0: नहीं था कि ऐसा हो सकता है कि वोकल कॉर्ड्स पर इफेक्ट पड़ता
1: नहीं,
0: है?
1: नहीं, नहीं पता था। अगर पता होता तो शायद, पर अभी हम सोचते हैं कि अगर कोई बोले कि इतना बड़ा रियलिटी शो होस्ट करना है आपको, लेकिन आपके गले पे असर पड़ेगा, तो भी हम ना नहीं बोलते।
0: बिल्कुल
1: नहीं बोल पाते।
0: कैसे संभाला फिर अपना गला उन दिनों में, जबकि ये कहा गया कि पूरी तरह से साइलेंस रहना है वगैरह वगैरह?
1: वो कुछ दिन तो हम बहुत परेशान रहे, क्योंकि बहुत दर्द होता था गले में, तो हम बहुत रोते भी थे। माँ थी मेरे पास यहीं पर, अंदर ही अंदर अब समझ आ गया था कि मेरा करियर तो है ही नहीं म्यूजिक में, हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो मेरा दिमाग, क्योंकि हम आई वॉज अ डूअर होता है ना, कुछ लोग करने वाले होते हैं, तो हमको करना था कुछ। अब हम आ चुके थे मुंबई और शोज जो थे वो पैसा दे रहे थे, हमको नहीं पता था कि शोज से पैसे आएंगे, पर अब तो आ चुके थे। चस्का तो वहां से भी लग चुका था और यहाँ पे म्यूजिक करियर जाता रहा। तो ऐसे में एक एक्टिंग करियर शुरू हुआ, तो हमको लगा ठीक है, मतलब तो कुछ कला से रिलेटेड करने में है ना, तो ये भी तो
0: इसी
1: का आर्ट का ही एक रूप है ना एक्टिंग, और अच्छा है, डिसेंट है। भोजपुरी का जो उस समय इमेज था, मतलब वल्गर गानों का, ये शो उस इमेज को भी तोड़ रहा था। एक अच्छा डिसेंट पारिवारिक एंटरटेनिंग शो, तो हमको लगा सही है। तो पहले कुछ दिन कुछ ही, हमको लगता है कुछ ही महीने का डिप्रेशन रहा होगा, और उसके बाद फिर चीजें पलटने लगी। आई स्टार्टेड एंजॉयिंग दैट।
0: और उसके बाद फिर वो जो एक्टिंग का सिलसिला चल पड़ा, उसमें कौन कौन से सीरियल्स आए वो भी हमारे सुनने वालों को बताइए।
1: सबसे पहले तो बड़की मलकाइन था, फिर उसके कुछ दिन बाद दूरदर्शन नेशनल पर अनुदामिनी करके एक शो आया, वो बहुत हिट हुआ, उसमें मेरा वैम्प का रोल था।
0: ये अलग चैलेंज हो गया।
1: सो मेरे लिए, बट ये चैलेंजेस बहुत काम कर रहे थे, क्योंकि वो चीजें जो आप सोच भी नहीं सकते, अगर आपको वो करनी पड़े तो आप अपने आप को फिर और बेहतर पहचानते हैं कि अच्छा ये भी सक्षमता है, ये भी करने में सक्षम होंगे हम, ये भी, ये सारी चीजें आप, सेल्फ एक्सप्लोरेशन की जर्नी है। जब आपने अपने ऊपर कोई कैप नहीं लगाया है कि हम यही करेंगे, तो फिर आप एक जर्नी पर निकल पड़ते हैं इंसानी तौर पे। तो वो मेरा शुरू हो गया था अनजाने में।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जिंदगी अपनी तरह से
1: आई वॉज अलाउिंग कि जीवन को जैसे बहना है बहू, क्योंकि अब तो हम जो सोच के आए थे कि हम बहुत जल्द, मेरे पापा बोले थे कि अब ये मुंबई जाएगी और हिंदी फिल्मों में गाने का कोशिश करेगी, वो तो मेरा चूर हो गया 2 ही महीने में जब डॉक्टर ने बोला नहीं पॉसिबल है। तो फिर हमने एक्टिंग को एक्सेप्ट किया, और भारत की शान, दूरदर्शन पे ही एक रियलिटी शो होता था भारत की शान, उसको भी होस्ट किया। जय हनुमान एक सीरियल आता था सोनी एंटरटेनमेंट पे, उसमें एक्टिंग की, उसमें भी वैम्प का रोल था, स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी, महाराणा प्रताप, बस थोड़े से अनजाने, नीम नीम शहद शहद, बींद बनूंगा घोड़ी चढ़ूंगा, इस तरह के छोटे छोटे शोज में अच्छे इम्पोर्टेंट रोल्स कर करके आई थिंक मेरे कुछ 6 साल निकले।
0: और ये जो गायकी वाला मामला था,
1: वो तो बस महीने में जैसे 20 दिन की शूटिंग और 10 दिन जो बचा है उसमें कभी कोई शो मिला तो कर लिया।
0: गला तब तक
1: संभल गया था, पर रियाजी गला नहीं था वो। वो तो उसके अंदर का चोट हील हो गया था, वो मेरे दिमाग का फितूर था कि वो चोट हील नहीं होगा, अब कभी कुछ नहीं होगा। बट एट द सेम टाइम शोज जो उस समय होते थे, उस समय शोज में प्रायोरिटी ये नहीं होता था कि सुरीला गाओ, ऑडियंस नाचनी चाहिए। तो गाने के ऊपर उतना प्रेशर है नहीं, कोई भी गाना चला दो ऑडियंस नाच रही है। तो शोज अच्छी मेरी अच्छी कट रही थी कि शोज भी चल रहे थे और एक्टिंग भी चल रहा था, और अब करियर तो है नहीं म्यूजिक में, सिंगिंग में, तो रियाज तो करने की जरूरत है नहीं, ऐसा जीवन चल रहा था मेरा।
0: और मम्मी पापा तब तक पटना में ही थे?
1: वो लोग पटना में ही थ्रू आउट रहे, मतलब पूरे टाइम वो लोग पटना, पापा क्योंकि सरकारी नौकर थे तो वो शहर तो नहीं छोड़ सकते थे। माँ आना जाना करती थी, ऑफकोर्स वो बेचारी बट गई थी अपने पति और अपने बच्चे के बीच, क्योंकि बड़ी बहन जो थी वो बैंगलोर में LLB कर रही थी, और वो प्रॉपर लाइफ जी रही थी जो एक उस उम्र का बच्चा जीता है, हॉस्टल लाइफ, क्लास जा रहे आ रहे। पर उनकी ये बेटी जो थी वो एक अद्भुत दुनिया में पहुंच गई थी। मतलब एक बंदा है, उस रियलिटी शो के बाद उसने बोला चलो बेटा मैं तुमको मोंटी शर्मा से मिलवाता हूँ। हम लोग पहुंच गए यशराज के स्टूडियोज में, मोंटी शर्मा उनके सामने बैठ के, सांवरिया फिल्म आई थी तब, आने वाली थी या आ गई थी, और उन्होंने गाना भी सुना। और हम लोग जब वापस लौट रहे थे तो रणबीर कपूर से भी मुलाकात हो गई, तो ऐसा लगा कि वाह अब तो बस प्लेबैक मिल ही जाएगा। और

0: वो ही टाइम था जब जो रियलिटी शो उसको होस्ट करने के ठीक पहले का टाइम, जब मेरा गला बिल्कुल रेडी था, जब माँ बाप को लगा था कि ये प्लेबैक में कुछ करेगी। और हमने मुलाकात की, हम जब घर वापस आए तो उस बंदे ने जिसने हमें मिलवाया बिना मांगे, उसने हमारी जो मीटिंग करा दी उसके एवज में उसने बोला कि उसकी कोई विदेशी मित्र मेरे पास रहेगी 3 महीने के लिए। तो मेरी माँ को ये बात खटक गई, क्योंकि ये बात उसने तब नहीं बोला जब वो हमें मिलवाने ले जा रहा था,
1: ये बाद में बोला गया।
0: ये बाद में बोला गया जब उसने हमें मिलवा दिया, और जब मेरी माँ ने मना कर दिया कि नहीं, अनजान कोई लड़की नहीं रहेगी तुम्हारे साथ, तो उसने बोला पर मैंने तो तुम्हें मोंटी शर्मा से मिलवा दिया या था, तब भी तुम मना कर रही हो मुझे। तो हमें ये गेम समझ आया कि यहाँ पे ऐसे ही होता है, एक हाथ दे एक हाथ ले, फेवर्स कोई फ्री में
1: करण बनते हैं।
0: हाँ, यहाँ कोई आपके लिए फ्री में नहीं कुछ करेगा, वो आपको लेके। और वो बहुत क्लियरली उसने बोला कि बट हम तो अभी तुमको मोंटी शर्मा से मिलवा के ला रहे हैं भाई,
1: तो ये तो मानना ही पड़ेगा।
0: तो ये तो तुम कैसे मना कर रही हो, मतलब तुम ये मना कर रही हो तो मतलब हम तुमको अब जीवन में कभी किसी म्यूजिक डायरेक्टर के पास नहीं ले जाएंगे। तो अब हम लोग पटना से उठ के आए हुए, हमारा तो हमारी तो दुनिया हिल गई। और मेरे पिताजी वैसे भी बहुत पुलिस वाले हैं, वो दुनिया के एक उस आयाम को देखते होंगे जो हम नहीं देखे हैं, तो उनको डर भी बहुत लगता है अपनी बेटियों के लिए, हर बाप को लगता है। पर पुलिस वाले थोड़ा ज्यादा डरते हैं क्योंकि वो थोड़े ज्यादा गंदगी देखते हैं, जो गंदा साइड है, जो कठिन साइड है जीवन का, वो ज्यादा देखते हैं। तो मेरे पापा हमको उस दिन एक बात समझाए कि बेटा किसी भी काम को करने के लिए अगर झुकना पड़े तो मत जाना, अपनी इज्जत अपनी डिग्निटी को सबसे ऊपर रखना, और अगर तुम्हारा मन कह रहा है कि उस जगह पे तुमको डर लग रहा है तो वहां से हट जाना, निकल जाना, काम नहीं मिले मत करना, पर कभी भी किसी के सामने हाथ मत फैलाना। क्योंकि उनको ये डर था कि अगर ये छोटी बच्ची है, ये काम मांगेगी तो एवज में उससे क्या मांग ले, ये पता नहीं जज कर पाए कि नहीं कर पाए। और क्योंकि दीपाली एक किताबी बच्ची थी,
1: अक्षरशः मान लिया उसने,
0: शब्दशः उस बात को हमने कर लिया फॉलो। वैसे भी कुछ ही दिनों बाद वोकल कॉर्ड्स फट गए, ये सब कुछ यू नो, ये अपने आप ये चीजें होती चली गई कि सिंगिंग से मेरा नाता रिश्ता टूट गया पूरी तरह से 2012 तक।
1: और ये सारा समय आपको जो है ये ले जा रहा था एक्टिंग की दुनिया में।
0: एक्टिंग की दुनिया में एक्टिंग करते करते ऐसा लगने लगा कि ये एक्टर जो है उसको तो सारा काम वही करना होता है जो डायरेक्टर बोलता है। तो बनना तो हमको डायरेक्टर है, आई एम अ लीडर।
1: ये यानी मंजिल जो है वो हर एक पड़ाव पर नई नजर आती रही।
0: बिल्कुल।
1: और यहाँ से FTI दिखने लगा।
0: बिल्कुल।
1: मतलब ये बहुत बड़ा टर्न नहीं था कि सिंगिंग से एक्टिंग और एक्टिंग से डायरेक्शन?
0: हाँ, टर्न था, बहुत बड़ा टर्न था। लेकिन हम बोले ना कि ये मेरा सौभाग्य है कि कभी कोई मेरे माँ बाप, मेरी बहन, कभी किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि तुम क्या कर रही हो, तुम करना चाहती क्या हो। कभी कोई नहीं हमको ये सवाल पूछता।
1: तो आपने एक दिन ये तय कर लिया कि आपको फिल्म इंस्टीट्यूट में जाकर डिप्लोमा लेना।
0: हाँ, और इसके लिए एक्टिंग छोड़ के बाकायदा, और तब तक इधर पैरेलली मेरा ग्रेजुएशन भी हुआ मुंबई में।
1: हाँ हाँ, अरे वो तो एडमिशन ले लिया यहाँ कॉलेज में, ये तो मैं भूल गया बात करना।
0: यहाँ हमने एडमिशन ले लिया और मेरा ग्रेजुएशन हुआ मास मीडिया में।
1: तो ये क्लासेस
0: जो थे, ये प्रिंसिपल काफी दयावान थी, वो रियलिटी शो देखती थी और शी वॉज अ फैन, शी वॉज अ सपोर्टर, तो उन्होंने इतनी छूट दे दी कि तुम
1: रेगुलर क्लासेस नहीं आओगी
0: तो चलेगा। तो वो वहां पे आई थिंक मेरा लक फेवर्ड मी एंड ग्रेजुएशन, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ हर कि मेरा ग्रेजुएशन हो गया। क्योंकि माँ बाप का ये भी था कि बेटा डिग्री तो चाहिए, बिना डिग्री के बिहारी जीवित नहीं रह सकता है।
1: लेकिन ये बहुत बढ़िया बात है, ये बहुत जरूरी बात है, और उसमें आपने इस पर फोकस किया ये भी उतनी ही बड़ी बात है कि एक तरफ जब एक्टिंग का मामला चल रहा है, प्रोफेशन सेट है, उसके बाद
0: प्रोफेशन सेट है, पैसे सेट है, मतलब एक 18-20 साल की लड़की के लिए जितने पैसे हम कमा रहे थे, अभी भी सोच के हमको ऐसा लगता है कि मतलब हम गलत रास्ते कैसे नहीं गए, ये कौन सी कृपा थी मेरे ऊपर।
1: ये सारे संस्कारों का खेल,
0: सारे संस्कारों का खेल है, ये मेरे माँ बाप के दिए हुए संस्कार थे। और 6 साल बाद जब हम सोचे कि हमको और पढ़ना है, FTII जाना है, तो वो मेरे पिताजी बोले बेटा तुम घर आ जाओ, कोई बात नहीं, अभी कोई कमाई नहीं, कोई काम नहीं, तुम घर आओ, मेरे पिताजी मेरे साथ बैठ के FTII की तैयारी शुरू कर।
1: एक गजब। तो आपने तब एक्टिंग भी छोड़ दिया,
0: बिल्कुल छोड़ के, सब कुछ छोड़ के मुंबई से वापस घर पटना।
1: ये तो बहुत बड़ा टर्न था।
0: हाँ, ये काफी बड़ा टर्न था, बहुत बड़ा टर्न था।
1: FTII की तैयारी किस तरह की?
0: एक तो पता नहीं था कि फिल्म देखा कैसे जाता है।

0: फिल्म देखना हमें मसाला फिल्में देखने आती थी, मनमोहन देसाई जी की जो ग्रैंड सक्सेस फिल्म जो बिहार में चलती थी। मेरे लिए फिल्म देखना मतलब एंटरटेनमेंट, बट FTI वॉज अ सीरियस बिजनेस। और वहां पे जब हम एक्टिंग कर रहे थे तो मेरे अंदर ये था कि डायरेक्टर जो बोल रहा है वही करना पड़ता है, तो भैया जो लीडर है हमको वही बनना है। जिस भी प्रोफेशन में हम काम करें जो लीडर है हमको तो वही बनना है। ये छोटा जो क्या बोलते हैं बाल मन जिसको कहते हैं वो अपना ही कुछ इन्फ्लुएंस निकालता रहता है। तो जैसे एज अ कैरेक्टर हमको ऐसा लगता था कि मेरे कैरेक्टर को ये लोग रुलाते बहुत है, इतना नहीं रो सकती है कोई, वो पलट के क्यों नहीं बोल रही है जब उसके साथ इतनी ज्यादती हो रही है। तो ये जो कहानी लिख रहा है ना हमको वहां बैठना है, सो दैट आई कैन टेल माई ओन स्टोरी मे बी यू नो ये मेरे दिमाग में ये
1: टू कंट्रोल द थिंग्स करेक्ट एंड टेल योर स्टोरी
0: करेक्ट टू टेल माई स्टोरी इन माई वेज। क्योंकि आप जो दिखाते चले जा रहे हैं ये सच नहीं है, इतनी प्रताड़ना कोई इंसान जीवित तो नहीं सह सकता है, वो कभी तो रिटेलिएट करेगा। तो वो रिटेलिएशन भी वो उस कैरेक्टर का बहुत सीमित दिखाते थे कि वो बस उसने एक बार ऐसे देख लिया चौंक के, बट मेरे नैरेटिव में वो फिट नहीं बैठ रहा था। तो हमको लगा ये कर कौन रहा है, ये खेल क्यों हो रहा है। और मेरी डायरेक्टर से बहस भी होती थी कि सर कभी तो आप पलट के मुझे जवाब देने दो इनको। तो डायरेक्टर ने बताया कि भैया जो राइटर लिखेगा और जो डायरेक्टर बोलेगा यही होगा। तो मेरे दिमाग में अच्छा तो हम अपनी कहानी बनाएंगे तो हम जाएंगे डायरेक्टर बनने। तब पता भी नहीं था कि FTI नाम का कुछ एग्जिस्ट करता है। इंटरनेट पे दुनिया खोल के पढ़ के पता चला हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, लेकिन उसमें तैयारी लगेगी, रिटन होगा, अगर वो क्वालिफाई हुआ तो इंटरव्यू होगा, ये मतलब एक छोटा UPSC का छोटा सा फॉर्मेट।
1: तो उसकी तैयारी के लिए दीपाली यहाँ से एक्टिंग वैक्टिंग सिंगिंग विंगिंग सब छोड़ के चली गई पटना और तैयारी शुरू कर दी।
0: बिल्कुल,
1: ये कहानी बहुत गजब की है भाई।
0: हाँ, हाँ।
1: इतने टर्न एंड ट्विस्ट हैं। पिताजी तैयारी करवा रहे हैं, फिल्में देखी जा रही हैं।
0: हाँ फिल्में देखी नहीं, हमें तो ये भी नहीं पता था कि फिल्म इंस्टीट्यूट में जाने के लिए फिल्में देखी जाती हैं। आप सोचिए हमको बहुत आश्चर्य होता है कि कितने कमाल के हैं ये लोग जिनके बीच हम पैदा हुए हैं। इनको कुछ नहीं पता है
1: नहीं, ये एक
0: लेकिन ये लगे हुए हैं
1: सबसे, हाँ।
0: हाँ, लगे हुए हैं। हमको भी नहीं पता है कि FTI में घुसने के लिए फिल्में देखनी पड़ेंगी, हमको ये पता है क्रिएटिव होना जरूरी है एंड आई एम क्रिएटिव। तो जब मेरा रिटर्न हुआ तो उसमें जो जनरल नॉलेज मेरा अच्छा था, जनरल अवेयरनेस अच्छा था, तो वो चीजें तो सॉर्टेड थी। क्रिएटिव राइटिंग करना था जो डायरेक्शन के कोर्स के लिए था वो सॉर्टेड थी। किसी एक फिल्म की समीक्षा अगर आ जाए, किसी स्पेसिफिक फिल्म का एक सीन डिस्क्रिप्शन आ जाए या एडिट पे बात आ जाए, वहां हम थोड़े अटकते, बट आई वॉज रेडी कि उसमें भी हम कुछ बात बना के लिख सकते हैं, इतने भी बेवकूफ नहीं है। वर्ल्ड सिनेमा तो पता भी नहीं था, सिनेमा देखना भी नहीं आता था टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हमेशा उसको एज अ एक्टिंग शूटिंग वही दिमाग में रहा। इसलिए शायद हम थोड़े डेड इमोशन थे, मतलब मेरे अंदर जो जज्बात थे ना वो काफी डेड थे। तो तैयारी शुरू की हमने वर्ल्ड सिनेमा के बारे में सिर्फ पढ़ के, क्योंकि फिल्में नहीं थी मेरे पास देखने को, मेरे लैपटॉप में वो CD प्लेयर नहीं था। मेरे पास वो कंप्यूटर नहीं था जिसमें हम CD लगा के वर्ल्ड सिनेमा की बात देख लें
1: या किसी अलग अलग जरिए से सिनेमा को डाउनलोड कर लें और जमा कर लें और
0: वो
1: शान
0: सब
1: बगा
0: कुछ भी नहीं आता था। मेरे हाथ में बस इतना ही था कि वो रिटर्न क्लियर करना है जैसे भी, क्योंकि हमको पता था कि अगर हम इंटरव्यू तक पहुंच गए हमको उसमें से नहीं छाट सकता है। तो आई थिंक आई वॉज वेरी लकी। एक्चुअली मेरा विश्वास था कि हम कभी रिजेक्ट नहीं होंगे। वो रियलिटी शो हारने की वजह थी क्योंकि हम मन से हारे हुए थे। एक लड़की नहीं जीत सकती थी इसलिए वो लड़की नहीं जीती, एक लड़की सोच रही थी वो FTI में निकाल लेगी इसलिए उसने निकाल लिया। यही है, मन के हारे हारे मन के जीते जीत, ये सत्य है।
1: यहाँ एक गाना सुनते हैं क्योंकि बहुत देर से हम बात कर रहे हैं, तो अब दीपाली कौन सा गाना सुनाएगी?
0: अब दीपाली के जीवन में जो मोड़ आया है वो है छोटी

0: इजाजत तक का सफर तय कर लिया। यहाँ से दीपाली चली आती है पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट, सिलेक्शन हो जाता है।
1: करेक्ट।
0: इंटरव्यू सब तोड़
1: सब सब सब सब
0: है ना,
1: सब सब।
0: तो मतलब दीपाली,
1: और जो लिस्ट निकलता है वो लिस्ट में सबसे नीचे का नाम है, क्योंकि वो रैंकिंग के बेसिस
0: सबसे नीचे का नाम है।
1: 12 सीट होते हैं, जिनमें से 6 जनरल कैटेगरी और 6 रिजर्व कैटेगरी। तो वो जो 6 सीट है उनमें सबसे नीचे मेरा नाम है, मतलब हमने जस्ट क्वालिफाई कर लिया,
0: बच गए
1: हम।
0: और कौन कौन लोग हैं हमारे साथ वहाँ पर?
1: अलग अलग। अच्छा, ये एक अच्छी बात है कि 12 स्टूडेंट्स में से हर स्टूडेंट अलग स्टेट का था।
0: बिल्कुल।
1: ये आई थिंक ये कॉन्शियस प्रोसेस है उनका सिलेक्शन का। क्योंकि मेरे बैच में केरलाइट भी था, कर्नाटका भी था, हम बिहारी, यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन स्टेट। तो अब क्या होता है, आप अपने प्रांत में, अपने स्टेट में अपने ही तरह के लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं। शायद इसलिए FTII जैसा इंस्टीट्यूट बनता है, बहुत बहुत सोच विचार के। अभी इस वक्त हम यहाँ बैठे हैं तो हमको FTII के मेरे दिन याद आ रहे हैं।
0: अच्छा,
1: वहाँ भी ऐसे ही स्टूडियोज है। बिल्कुल। यही है ही वो।
0: बिल्कुल।
1: वो प्रभात खबर स्टूडियो हुआ करता था, प्रभात स्टूडियोज शांताराम जी का। तो अभी जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल इस ऑफिस की तरह ही, हमारे ऐसे ही स्टूडियोज होते थे, हमारे ऐसे ही क्लासेस होते थे। तो बट द बेस्ट पार्ट वॉज कि सारे बच्चे अलग अलग स्टेट के थे, सारे ग्रेजुएट्स थे। तो आप एक उम्र, अब आप एक जीवन का एक नजरिया, एक एक्सपीरियंस, एक एहसास, आपका दिल टूट चुका है, अब तक आपको प्यार हो चुका है, आपका ब्रेकअप हो चुका है, आप जीवन में फिनेंशियल स्ट्रगल समझ चुके हैं, आपने वो सारी चीजें, क्योंकि अब आप ग्रेजुएट हैं तो आपने एक उम्र तो जी ली है, एक हिस्सा एक्सपीरियंस कर लिया है। और उसके बाद आप पहुंचते हैं एक ऐसी जगह जहां वर्ल्ड सिनेमा की बात हो रही है, और सिर्फ सिनेमा, सिर्फ टेक्निकल बातें नहीं हो रही है, ये देख के समझ आ रहा है कि जो मेरे अंदर जो एहसास चल रहा है, इटली में बैठा 100 साल पुराना डायरेक्टर भी उसी एहसास को दिखाने में कामयाब हो रहा है।
0: बिल्कुल।
1: ये समझ आया, सिनेमा इज केपेबल, व्हाट इज सिनेमा केपेबल ऑफ। ये FTII ने समझाया कि इंसान जीना कैसे है, पर्सपेक्टिव क्या होता है।
0: देयर इज नो बाउंड्री इन ह्यूमन इमोशंस।
1: देयर इज नो बाउंड्री। और आप अपने जीवन का कैमरा कहाँ रख रहे हैं, और अपने जीवन को किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं।
0: बहुत सही।
1: नॉट जस्ट लिटरली, फिजिकली आप कैमरा कहाँ रख के एक सीन लगाते हैं, उसके पीछे के जो कारण होते हैं ये तो हम सोचते ही नहीं है कि क्यों इस वक्त हम इस लड़ाई को छत से देखा जा रहा है। इस लड़ाई को डायरेक्टर ने नीचे से क्यों नहीं दिखाया। ये चीजें, ये जो पर्सपेक्टिव है, जो फिजिकली और नॉन फिजिकली, मेंटली ऑल्सो, हमको समझ आया कि अच्छा नजरिया होता क्या है एक्चुअली। ये FTII ने सिखाया हमको।
0: और यहाँ वर्ल्ड सिनेमा जो है वो पूरी तरह से अपने कब्जे में था, कुछ भी देख सकते थे, डिस्कस कर सकते थे।
1: बिल्कुल। हमारे जो फैकल्टी थी, जो विजिटिंग फैकल्टीज थे, जो टीचर्स थे, वो बड़े समझदार लोग थे, बहुत सहनशील समझदार लोग थे। क्योंकि ये सारे जो बच्चे आए थे ये सब अपने अपने घरों से लड़कर आए थे। मतलब कोई इंजीनियर है, इंजीनियरिंग के बाद पहुंच रहा है, किसी ने जो, ये वो बच्चे थे जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है और वो वेट कर रहे थे उस दिन का जब वो अपने माँ बाप को बोलेंगे अब तो मेरा चलेगा।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: जब उन्होंने थोड़े से पैसे भी कमा लिए हैं कहीं से कैसे। तो ये एक ऐसा बाउंड्री था, जो फिजिकल बाउंड्री था FTII का, जिसके अंदर सिर्फ आजाद पंछी थे।
0: और ये सारे सिनेमा के जुनूनी लोग,
1: ये
0: थे।
1: सब सिनेमा लवर्स। और इनकी बातें, इनके डिस्कशंस, इनके एक्सपीरियंसेस, इनका जीवन को महसूस करने का तरीका ही अलग था। ये देखते ही कुछ और थे, जो हम लोगों को नॉर्मल दिखता था ये उल्टा देखते थे उन चीजों को। और ऐसे लोगों के साथ मेरा सौभाग्य हुआ कि हम इन लोगों के बीच में गए। मेरे जैसा सीधा चलने, सीधे रास्ते चलने वाला इंसान एक खुले पिंजरे में घुस गया था, और वहां पर लोगों का सिनेमा देखने का तरीका, उस पर डिस्कशंस, अपनी फिल्में बनाना है आपको, आपके अपने प्रोजेक्ट्स हैं। ये जो मेरा एक साल का जर्नी था FTII में, आई डिड टेलीविजन डायरेक्शन फ्रॉम देयर। एक साल बाद जो नाम सबसे नीचे था वो वहां से टॉपर बन के निकलता है।
0: वाह वाह वाह।
1: और हमारे यहाँ जो टॉपर होता था उसको विधु विनोद चोपड़ा स्कॉलरशिप मिलती है। सो आई रिसीव्ड दैट स्कॉलरशिप इन FTII। तो मेरे लिए

0: आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा वो जर्नी होगा,
1: पूरा ट्रांसफॉर्मेशन,
0: पूरा पूरा मतलब दीपाली कई फेजेस में बनी और टूटी है। एफटीआई उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत दीपाली को अडल्ट बनाया एफटीआई ने इन टर्म्स ऑफ अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन इमोशंस। वहां पे हम पहली बार रोना सीखे पब्लिकली।
1: अच्छा,
0: दूसरों के सामने भी रोया जा सकता है, यह अभी तक नहीं हुआ था मेरे साथ, और एफटीआई के अंदर पहली बार हुआ जब हम किसी के साथ बैठकर कुछ बात करते हुए और हम रो पाए, और वो एक इतना कैथार्टिक फीलिंग था, वो इतना अच्छा है महसूस हुआ जब ये
1: हल्का
0: हुआ,
1: हो जाना,
0: इतना हल्का महसूस हुआ, तो समझ आया कि जीवन कुछ और ही है, मतलब आप कुछ और ही समझ रहे थे अब तक।
1: तो ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था, और वहां पूना में सिनेमा की दुनिया में रहकर एक तरह से खुद से मुलाकात हुई।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने।
1: यहाँ एक गाना सुन लें?
0: बिल्कुल।
1: उसके बाद मुंबई की तरफ आते हैं।
0: बिल्कुल।
1: कौन सा गाना होगा?

0: एकदम सत्य है ये।
1: दीपाली के साथ बिल्कुल यही हो रहा था,
0: बिल्कुल यही हो रहा था।
1: ये जावेद साहब की बोले हैं।
0: हाँ,
1: मशाल फिल्म का गाना है और हृदयनाथ मंगेशकर का म्यूजिक है
0: जी,
1: है ना, सुनते हैं ये गाना।

0: यहाँ से फिर बम्बई आ जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और यहाँ चूंकि अब कैमरे के पीछे रहने की ट्रेनिंग हो गई है,
1: करेक्ट,
0: तो अब क्या करना है?
1: अब टारगेट तो यही था कि बड़े किसी डायरेक्टर को पकड़ लिया जाए और उनके असिस्टेंट बन जाते हैं, जीवन धन्य है यहाँ से। अब यही तो अब करना क्या है, FTI से करके सिनेमा बनाना है, करेक्ट। तो एक साल वही छोटे मोटे एड्स, म्यूजिक वीडियोस असिस्ट करने का काम शुरू हो गया,
0: कॉर्पोरेट फिल्म्स वगैरह,
1: कॉर्पोरेट फिल्म्स, एडवर्टाइजमेंट्स, म्यूजिक वीडियोस, या यू नो किसी बड़े डायरेक्टर के यहाँ प्री प्रोडक्शन का 15 दिन में लोगों की जरूरत है, क्योंकि अभी नाम नहीं है मेरा। वो इंडियन आइडल वाली दीपाली यहाँ नहीं चलने वाली है,
0: बिल्कुल,
1: वो जो फेमस वाली है, जो सिंगर बनी थी या जिसने होस्ट किया था। और एक अच्छी बात क्या हुई मेरे साथ, जो कि उस वक्त अच्छी नहीं लगती थी, कि कोई हमको पहचानता ही नहीं था, क्योंकि मेरा जो चेहरा है वो इतना एवरेज इंडियन फेस है कि आप जैसे एक एक एक पर्सनालिटी होती है ना, एक अलग किस्म की खूबसूरती, जैसे ऐश्वर्या राय है, वो एवरेज इंडियन ब्यूटी नहीं है, वो स्टैंड आउट इंडियन ब्यूटी है। वो कहीं भी खड़ी होंगी, हजारों लाखों की भीड़ में भी, तो आपकी नजर उनके चेहरे पर चली जाएगी। पर एक एवरेज इंडियन बिल्ट फेस मेरा वो है, तो रियलिटी शो से निकले भी थे तो भी लोग हमको जल्दी पहचान नहीं पाते थे, क्योंकि मेरा वैसा कुछ है नहीं, वो पहचानने वाला कोई फीचर नहीं है स्ट्राइकिंग, तो वो मेरे फेवर में काम करता था, क्योंकि फिर हमको ताने कम सुनने पड़ते थे कि अरे तुम तो रियलिटी शो जीत के या जो भी करके आई हो, तो तुम ये काम क्यों कर रही हो, तो ऐसा भी सुनने मिलता था।
0: एक अनोनिमिटी मिली
1: और वो एक अज्ञातवास, जो मेरे जीवन का बहुत सुंदर अज्ञातवास था, क्योंकि अब हम उस लेवल पे थे कि हम कुछ भी कर सकते थे, कोई नहीं पहचानता है हमको। वो इतना एम्पावरिंग होता है, क्योंकि जब आप जब जस्ट रियलिटी शो से निकले तो आपको सब जान रहे हैं, अगले एक दो साल तो डेफिनेटली आपको लोग जान रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप 5 स्टार्स में जा रहे हैं, आ रहे हैं, आप रोज फ्लाइट ले रहे हैं, आपका जीवन अलग चल रहा है, और अचानक से करियर जो है वो धीरे धीरे अपना मोड़ लेने लगता है, और आप एक दिन डिसाइड करते हैं कि अब हम कुछ नहीं करेंगे। और जब आप FTI से निकलते हैं तो आपकी ट्रेनिंग ऐसी है कि आप यू आर रेडी टू बी अ स्पॉट बॉय टू अ डायरेक्टर, आप उस बीच में कुछ भी हो सकते हैं, आप
0: बहुत सही
1: खुल चुके हैं, आप बिल्कुल निर्लज्ज हो चुके हैं, आप हर काम करने को तैयार है, क्योंकि टारगेट ध्येय ये है कि आपकी फिल्म बननी चाहिए,
0: हाँ।
1: या जिसकी फिल्म बन रही है उसका पूरा सहयोग होना चाहिए,
0: बिल्कुल,
1: वो पैशनेट लोग ही कर सकते हैं,
0: टीम की तरह। अब
1: जो इंडिविजुअल दीपाली, इंडिविजुअलिस्टिक दीपाली थी, अब वो समाज के साथ जिसके कोई दोस्त नहीं होते थे, अब उसके दोस्त बनने शुरू हुए, अब दीपाली एक अलग आयाम में घुस रही थी अपने जीवन के, और यहाँ पे दोस्ती आई मेरी लाइफ में। इसके पहले तक हम बहुत अकेले थे, बहुत अकेले थे। तो जब हम मुंबई वापस आए तो क्योंकि बैचमेट्स, और FTI का तो हम मशहूर हैं बैचमेट्स, और
0: अलुमनाई
1: हमारा काफी तगड़ा है,
0: वहाँ एक तरह का कनेक्शन जो है जोरदार होता है,
1: बहुत जोरदार होता है। और वो क्या है, वो बिल्कुल इतना गहरा है कि समय की सीमा उसमें मायने ही नहीं रखती, कम से कम समय में आप इतनी गहराई से, क्योंकि काम ही ऐसा है, आप एक काम ही ऐसा कर रहे हैं कि आप जुड़ेंगे ही उस लेवल पे। तो वहां से मेरी लाइफ में दोस्ती शुरू हुई, दोस्तों के साथ काम शुरू हुआ, कुछ ऐसे दोस्त बने जो मतलब मेरे जीवन से भी प्यारे हैं, मेरे जान से भी प्यारे हैं मेरे दोस्त, वो लोगों के साथ मुंबई में मेरा असिस्टेंट बनने का सपना और स्ट्रगल और जो भी रास्ता है वो शुरू हो गया था, और एक साल तक ये बड़ा अच्छा चला। इस बीच एक दिन कैफी आजमी साहब की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं हर साल, शबाना आजमी जी और बाबा आजमी जी, दे वर लुकिंग फॉर सिंगर्स जो गाना गा सके उनके बर्थ एनिवर्सरी पे, और एक अच्छा मंच कई नए टैलेंट को भी जगह देने का, क्योंकि वो आंगन ऐसा है कि हर कोई वहाँ बैठना चाहता है। वो आप गए होंगे आई एम श्योर जानकी कुटीर में,
0: पृथ्वी हाउस में होता है,
1: पृथ्वी हाउस में, पृथ्वी हाउस के ये इधर जो जानकी कुटीर है उसका नाम, हाँ, उस वो उन्हीं का आंगन है जहाँ कैफी साहब रहते थे, तो वहीं पे एक छोटा सा स्टेज लगा के, और
0: वहाँ करते हैं।
1: उनकी मंशा भी यही है कि नए टैलेंट को, क्योंकि वो

0: इतना प्योरिटी से और इतनी शिद्दत से और इतने बड़े लेवल का कार्यक्रम है कि इतने बड़े बड़े समझदार गुणी लोग वहां बैठते हैं कि वहां कोई भी गाने को तैयार हो जाएगा। बट ये देखिए, ये उनका बड़प्पन है कि उनको नए टैलेंट चाहिए, वो चाहते हैं कि वो भी अपना टैलेंट नए लोग भी दिखा सके। और मेरे एक दोस्त को, क्योंकि हम गाते थे तो उसको पता चला कि बाबा आजमी को असिस्ट करता था, तो उसने बोला चल तू भी चल, गाना चाहिए, उनको सिंगर्स चाहिए। तो हम बोले मेरा क्या काम है वहां पे, हम तो शोज वोज करते हैं, अब उनको अच्छे सिंगर चाहिए होंगे। नहीं नहीं तू चल। और हम पहुंचे और बाबा आजमी आए बाहर, एक तो वो दिखते भी कैफी साहब जैसे ही है तो काफी ऐसा फील हो रहा था, ओ माय गॉड, यू नो बाबा आजमी। एंड उन्होंने बोला आप सुनाइए, आप क्या सुना सकती हैं। तो हमने गाना गाया कैफी साहब का, वक्त ने किया क्या हंसी सितम। बाबा आजमी डिस्टर्ब हो गए, उन्होंने बोला आप करती क्या है, क्योंकि आप जिसके साथ आई है वो तो मेरा असिस्टेंट है, तो ये आपका दोस्त है, तो मतलब आप सिंगर तो नहीं है, तो आप करती क्या है। तो आई सेड कि सर हम अभी डायरेक्शन पास आउट हैं एफटीआई से और काम ढूंढ रहे हैं, तो आप अपना जीवन इसी में व्यर्थ कर देंगी, मतलब आप गाना क्यों नहीं गाती हैं। तो आई सेड सर वो एक डॉक्टर ने बोला था कि हम गाना नहीं गा सकते हैं जीवन भर। तो बोले वो पागल है, वो डॉक्टर पागल है जिसने ये बात आपको बोली है। अब हुआ ये कि वो इतने साल में ये दीपाली की आवाज हील कर चुकी थी, ये तो कॉमन सेंस की बात है जो दीपाली के पास नहीं था क्योंकि आवाज तो पैदा हुई है जिसके साथ आप वो आवाज तो वैसी ही रहेगी ना। गला खराब हो सकता है, आवाज नहीं जा सकती छोड़ के, आप पैदा हुए हैं उसके साथ, उस मशीन के साथ। तो जब बाबा आजमी ने ये बात बोली ना, तो उनके एक अनजान इंसान, आप उनको पर्सनली नहीं जानते हैं, लेकिन वो अगर आपके लिए इतनी शिद्दत से कुछ महसूस कर रहा है तो वो उनकी आंखों में दिखता है। तो बाबा आजमी की आंखों में दिखा कि उनको इस बात की छटपटाहट हो गई कि ये बच्ची अपना जीवन बाकी कामों में व्यर्थ कर क्यों रही है जब ये ऐसा गाती है। और ये बात मेरे साथ रह गई, और उन्होंने उस साल हमको वहां मौका भी दिया कैफी साहब के महफिल में ये गाना, उनका सबसे फेवरेट गाना है बाबा आजमी सर का, कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं,
1: अनुपमा फिल्म का।
0: और वो उनको मेरी आवाज इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने बोला कि इस गाने के लिए भैया मार्केट में बहुत बवाल होता है कि हम गाएंगे तो हम गाएंगे, सिंगर्स लूटने के लिए दौड़ते हैं, बट आई वॉन्ट टू गिव दिस सॉन्ग टू यू।
1: वाह वाह वाह,
0: ये कॉन्फिडेंस जब बाबा आजमी सर ने मेरे अंदर दिखाया तो हमको लगा कि यार ये हम सच में कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं।
1: फिर से एक दो रहा गया
0: आगे
1: बढ़ने से पहले वही गाना सुनना चाहिए।

कितनी सुंदर पंक्तियों को चुना आपने गाने के लिए, बहुत शानदार गाना है। और ये इस गाने के सबसे अच्छे अंतरों में से एक है, पलकों की ठंडी सेज पर। क्या बात है, क्या बात है।

0: खिलाड़ी खेलों का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत संभव है। शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वही सही मायने में प्रगतिशील समाज है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉप आउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है।
2: हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्शों को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट 12 वर्षों पहले लगभग 4.5% था। अब ये ड्रॉप आउट रेट नहीं के बराबर है। ये उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत को विश्व की कौशल राजधानी के रूप में स्थापित करना और साथ ही ज्ञान शक्ति बनना देश की प्राथमिकता है। इस अवसर पर 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए 48 स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय की आदत पर चिंता जताई। उन्होंने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की।
3: ड्रग्स का मामला बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा था, नहीं पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है। क्या उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस, उसके कारण क्या भय है, इस प्रकार से मैं पूरे शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हम

0: மாதிரி கொஞ்சம் சேப்பட்ல வார்த்த பிரசாரம் டெல்லி கேந்திரம் நுண்ணிரிலே.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया, वैश्विक अनिश्चितता के बीच 7.8% की जीडीपी वृद्धि भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाती है. उन्होंने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के विद्यार्थियों को संबोधित किया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भावी पीढ़ी के उद्यमियों और वैज्ञानिकों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करने में शिक्षकों की भूमिका पर बल दिया. नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित जल विद्युत परियोजना की सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत और नेपाल का संयुक्त अभियान जारी. महाराष्ट्र के मेलशेत और पेंच बाघ अभयारण्य गिद्धों के लिए सबसे सफल पुनर्वास स्थल बना. उत्तरी उत्तर पूर्वी राज्यों, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, बिहार, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में सोमवार तक तेज बारिश के आसार. और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंचे. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की 7.8% की तिमाही वृद्धि आर्थिक शक्ति को दर्शाती है. उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत अवरोध से नीतिगत गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है. श्री मोदी ने नई दिल्ली में एसआरसीसी के शताब्दी समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है. प्रधानमंत्री ने कहा कि एसआरसीसी ने वर्षों से छात्रों की कई पीढ़ियों को सीखने, आगे बढ़ने और समाज में बदलाव लाने का अवसर दिया है.
2: जब कोई इंसान 100 वर्ष जीता है तो उसे अनुभवों का सागर माना जाता है, और जब कोई संस्थान 100 वर्ष का होता है तो वो उपलब्धियों और प्रेरणाओं का महासागर हो जाता है. अपने 100 वर्षों की इस यात्रा में एसआरसीसी ने पीढ़ियों को गढ़ा है, उन्हें उज्जवल भविष्य से जोड़ा है. जो आए उन्होंने पढ़ा और जो निकले वो गढ़े हुए निकले.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 14 करोड़ भारतीय मिलकर भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे. इससे पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने अपने भाषण में एसआरसीसी द्वारा वर्षों से उच्च स्तर बनाए रखने की सराहना की. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है. उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार में कुशल मानव संसाधनों की आवश्यकता है. केंद्रीय मंत्री ने इसे युवा आबादी के लिए एक अवसर बताया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एसआरसीसी के शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली मेट्रो से गए. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षकों को सर्वोच्च सम्मान दिया जाना चाहिए क्योंकि वे भारत को सीखने और नेतृत्व करने में मदद करते हैं. शिक्षक दिवस पर आज एक लेख साझा करते हुए उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करना, उनकी जिज्ञासा को जगाना, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना और उनकी तर्क शक्ति तथा निर्णय क्षमता को निखारना शिक्षण के सबसे उपयोगी और फलदायी आयामों में से है. राष्ट्रपति ने कहा कि प्रेरणा दायक शिक्षा से ही उद्यमियों, वैज्ञानिकों और रचनात्मक कलाकारों की पीढ़ियां तैयार की जा सकती हैं. शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है. उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉप आउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है.
3: हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्शों को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है. हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था. अब ये ड्रॉप आउट रेट नहीं के बराबर है. ये उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है. इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा.
1: राष्ट्रपति ने कहा कि भारत को विश्व की कौशल राजधानी के रूप में स्थापित करना

0: और साथ ही ज्ञान शक्ति बनना देश की प्राथमिकता है।
1: चुने गए सुजोग्यों प्रशिक्षकों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है। देश के विकास में एकेडमिक एक्सेलेंस, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत अधिक महत्व है। भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने के साथ साथ स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित करना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता में से शामिल है।
0: राष्ट्रपति ने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा को आगे बढ़ाने में सावित्रीबाई फुले की महत्वपूर्ण भूमिका को भी याद कर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने स्कूली शिक्षा को शिक्षा प्रणाली का आधार बताया।
1: ज्ञान और कौशल तो कभी भी प्राप्त किया जा सकता है, परंतु बचपन में ही सदाचार की शिक्षा देना अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। आरंभिक कक्षा में बच्चों के बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक विकास पर निष्ठापूर्वक ध्यान देकर हमारे शिक्षक अच्छे विद्यार्थियों और कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों की भावी पीढ़ियां तैयार करते हैं।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षकों का ये दायित्व है कि वे कुछ विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों में आत्मविश्वास जगाएं।
1: कुछ विद्यार्थी गांव के किसी सामान्य स्कूल से शहर के बड़े स्कूल में आते हैं और थोड़ा असहज हो जाते हैं। कुछ विद्यार्थी स्वभाव से ही संकुची होते हैं। कुछ विद्यार्थी में बहुत प्रतिभा होती है, लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। ऐसे सभी विद्यार्थी जो किसी कारण से कोई भी कमी महसूस करते हैं, उनमें आत्मविश्वास जगाना और उन्हें आगे बढ़ाना शिक्षकों का विशेष दायित्व होना चाहिए।
0: समारोह में 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों के 48 चयनित स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की। ये व्याख्यान श्रृंखला कानून, न्याय और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए नियमित मंच प्रदान करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और नेपाल के बचाव दल का चिली में सुरंग में बचाव अभियान जारी है और सुरंग के भीतर से भारी मलबा, पानी तथा कीचड़ हटाया जा रहा है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने आज बताया कि बचाव अभियान को सुगम बनाने के लिए पास के स्याफ रुबेसी से सुरंग के प्रवेश द्वार तक एक पहुंच मार्ग का निर्माण भी चल रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास हिमस्खलन के कारण अचानक बाढ़ आई। इस आपदा ने उत्तरी और मध्य नेपाल में व्यापक तबाही मचाई, जिससे घर, सड़कें, पुल और जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हुई। इस बीच विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज स्वस्थ असहमति और विचार विमर्श की संस्कृति के महत्व पर जोर दिया। नई दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ब्रिक्स के सदस्य देशों और सहयोगी देशों के प्रतिनिधि मंडलों को संबोधित किया। एक रिपोर्ट।
5: न्यायमूर्ति

0: श्री सूर्यकांत ने उचित न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने याद दिलाया कि नालंदा विश्वविद्यालय एक समय में सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक केंद्र हुआ करता था, जहां विश्व भर के विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को बिना किसी भेदभाव या बाधा के प्रवेश दिया जाता था। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स को भी जीवंत नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाना चाहिए। मध्यस्थता पर एक सत्र के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने मध्यस्थता संस्थानों के बीच सहयोग को मजबूत करने, पेशेवर प्रशिक्षण, बहुभाषी क्षमता और न्यायाधीशों, मध्यस्थों, वकीलों और व्यवसायों के बीच संवाद को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि संवाद कायम रह सके, व्यापार जारी रह सके और ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच विश्वास बढ़ सके। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत शिलालेखों और समुद्री व्यापार से लेकर गणित तक अपनी विरासत का अध्ययन करने और उसे दोबारा प्राप्त करने में पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ है। नई दिल्ली में वार्षिक इतिहास पुरस्कार समारोह और डॉक्टर एस एल भैरप्पा स्मृति व्याख्यान में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर है।
2: इंडिया टुडे इज सेल्फ अश्योर्ड।
0: हमने इस मामले में किसी और की अनुमति का इंतजार करना छोड़ दिया है और अब हम अपनी विरासत का अध्ययन खुद कर रहे हैं। हम शिलालेखों को पढ़ रहे हैं, अपने समुद्री व्यापार के इतिहास को समझ रहे हैं और गणित के जरिए कहानियों को पूरी प्रसन्नता और सटीकता के साथ सामने ला रहे हैं।
2: टेलिंग दीज स्टोरीज विद रियल प्लेजर।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए तीन श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के मेलघाट और पेंच बाघ अभयारण्य बंदी प्रजनित गिद्धों के पुनर्वास के लिए भारत के सबसे सफल स्थलों के रूप में उभरे हैं, जहां जीवित रहने की उत्साहजनक दर दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने सोमवार तक पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उधर बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने आज सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी क्योंग को 21-16, 18-21, 21-11 से हरा दिया। और महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 13 ओवर में 7 विकेट पर 45 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया, वैश्विक अनिश्चितता के बीच 7.8% की GDP वृद्धि भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के विद्यार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भावी पीढ़ी के उद्यमियों और वैज्ञानिकों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करने में शिक्षकों की भूमिका पर बल दिया। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित जल विद्युत परियोजना की सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत और नेपाल का संयुक्त अभियान जारी और

करते हुए उन्होंने अनेक प्रसिद्ध संगीतज्ञों के साथ संगत की है और भारतीय शास्त्रीय संगीत को समृद्ध किया है। उनकी वादन शैली में शुद्धता, मधुर नाद, संयम और गहरी लयात्मक संवेदनशीलता का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। विद्वान वाराणसी काली प्रसाद

0: बाबू को उनकी उत्कृष्ट संगीत साधना और विशिष्ट वादन शैली के लिए मृदंग सौख्य भास्कर तथा मृदंग कोमल वाधमणि जैसी प्रतिष्ठित उपाधियों से सम्मानित किया गया है। अपने मधुर, सहज और भावपूर्ण मृदंगम वादन के कारण श्री काली प्रसाद बाबू को स्नेहपूर्वक द विस्पर ऑफ द मृदंगम और मेलोडिक परक्यूशनिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। वे गौरवशाली वाराणसी संगीत परंपरा के एक योग संवाहक हैं और दक्षिण भारतीय मृदंगम वादन की समृद्ध परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज रात्रि के इस मृदंगम वादन के कार्यक्रम में आपके साथ संगत करने वाली कलाकार हैं वायलिन पर सुश्री वीएसपी गायत्री शिवानी।
1: विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू इज एन एमिनेंट टॉप ग्रेड मृदंगम आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी हैदराबाद, known for his exceptional artistry and musical sensitivity. He is the grandson of the late Sri Varanasi Gantaya Shastri, the legendary mridangam exponent honored with the title Andhramani. He mastered his art under his father, a renowned mridangam vidwan, late Sri Varanasi Venkata Subrahma Shastri, who retired from Akashvani Hyderabad. With more than 3 decades of dedicated service in Akashvani Hyderabad, he has accompanied numerous eminent musicians and enriched Indian classical music. His artistry is distinguished by precision, tonal beauty, restraint, and profound rhythmic sensitivity. He has been honored with the prestigious titles Mridanga Saukhya Bhaskara and Mridanga Komala Vadyamani. Affectionately known as the Whisper of the Mridangam and Melodic Percussionist, he is celebrated for his soft, soulful, and graceful strokes. A proud torchbearer of the illustrious Varanasi musical lineage, he represents the rich South Indian mridangam tradition. In tonight's broadcast, Vidwan Varanasi Kali Prasad Babu is supported on violin by VSP Gayatri Shivani.
0: विद्वान श्री वाराणसी काली प्रसाद बाबू अपने मृदंगम लय विन्यास का आरंभ चतुरश्र जाति त्रिपुट ताल से कर रहे हैं।
1: विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू बिगिन्स हिज मृदंग लय विन्यासम विद चतुरश्र जाति त्रिपुट तालम।

0: विद्वान श्री वाराणसी काली प्रसाद बाबू अपने मृतंगम लय विन्यास का समापन मिश्र चापू ताल से कर रहे हैं।
1: विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू कंक्लूड्स हिज मृदंग लय विन्यासम विद मिश्र चापू तालम।

0: इसी के साथ आज की इस राष्ट्र संगीत कार्यक्रम में विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू द्वारा मृदंग लय विन्यासम अब संपन्न होता है। उनके साथ वायलिन पर संगत कर रही थी सुश्री वीएसपी गायत्री शिवानी। ये राष्ट्र संगीत कार्यक्रम आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आपके लिए प्रस्तुत किया गया।
1: With that, we conclude the Mridanga Lai Vinyasam by Vidwan Sri Varanasi Kali Prasad Babu in the broadcast of National Program of Music. He was supported on violin by VSP Gayatri Shivani. This concert was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for National Program of Music and was brought to you from the Delhi station of Akashwani.
2: प्रस्तुत है संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में विठल कुमार राजपुरा का पखावज वादन। इंदौर की सांगीतिक माटी से जुड़े और प्रतिष्ठित नाना साहब पानसे घराने के होनहार पखावज वादक श्री विठल कुमार राजपुरा जी आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं। श्री राजपुरा जी ने पखावज वादन की गहन शिक्षा आकाशवाणी के ही टॉप ग्रेड कलाकार पंडित गोस्वामी श्री देवकी नंदन जी महाराज से प्राप्त की है। विठल जी की वादन शैली की सबसे बड़ी खूबी है उनके बोलों की स्पष्टता, तैयारी और छवि पढ़नों का अलौकिक वादन जो सीधे रसिकों के दिल में उतर जाता है। राष्ट्रीय युवा उत्सव में स्वर्ण पदक विजेता, कल के कलाकार और निमाड़ प्रतिभा अवार्ड जैसे कई सम्मानों से अलंकृत विठल जी ने देश के प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का जादू बिखेरा है। तानसेन समारोह के गमक उत्सव, कालिदास समारोह और चक्रधर संगीत समारोह जैसे अनेक राष्ट्रीय आयोजन में विठल जी ने अपने एकल वादन और जुगलबंदी से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया है। श्री विठल कुमार राजपुरा आज के कार्यक्रम में पखावज पर झपताल प्रस्तुत कर रहे हैं। आपके साथ सारंगी पर लहरा दे रहे हैं श्री जगदीश बारोट।
3: In the National Program of Music, we now present a Pakhavaj recital by Sri Vithal Kumar Rajpura. Deeply rooted in the musical soil of Indore, the promising Pakhavaj maestro of the prestigious Nana Saheb Panse Gharana, Sri Vithal Kumar Rajpura is an A-grade artist of Akashwani. Sri Rajpura has received rigorous training in Pakhavaj from the top-grade artist of Akashwani, Pandit Goswami Sri Devki Nandanji Maharaj. The hallmark of Vithalji's playing style is the absolute clarity of his syllables, his swift readiness, and the divine rendition of Chabi Parno, which deeply touches the heart of music connoisseurs. A gold medalist at the National Youth Festival and adorned with honors such as Kalki Kalakar and the Nimad Pratibha Award, Vithalji has spread the magic of his art on prestigious stages across the country. In numerous national events like Gamak Utsav of Tansen Samaro, Kalidas Samaro, and Chakradhar Sangeet Samaro, Vithalji has mesmerized all

तक धा कृतक धातक कृतक धुम कृतक धा कृतक धातक कृतक धुम कृतक धा कृतक धातक कृतक धुम कृतक धा कृतक धातक कृतक धुम कृतक धा कृतक धातक कृतक धुम कृतक धा कृतक धातक कृतक धुम कृतक धा कृतक धातक कृतक धुम कृतक धा कृतक धातक कृतक धुम कृतक धा कृतक धातक कृतक धुम कृतक धा कृतक धातक कृतक धुम कृतक धा कृतक धातक कृतक धुम कृतक धा कृतक धातक कृतक धुम कृतक धा कृतक धातक कृतक धुम कृतक धा कृतक धातक कृतक धुम कृतक धा कृतक धातक कृतक धुम कृतक धा कृतक धातक कृतक धुम कृतक धा कृतक धातक कृतक धुम कृतक धा कृतक धातक कृतक धुम कृतक धा कृतक धातक कृतक धुम

तट मंद मंद गति चली जात वर्ष पान दुराले लचकत फिरकत चलत पांत चित वना दिप्यारी चंद्र चमक चपला से चमकत चंद्र मुखीरा धारा धारा धा यमुना गे तट मंद मंद गति चली जा वृष पान दुराले लचकत फिरकत चलत पांत चित वना दिप्या चंद्र चमक चपला से चमकत चंद्र मुखीरा धारा धारा धा यमुना गे तट मंद मंद गति चली जा वृष पान दुराले लचकत फिरकत चलत बांक चित वन अति प्यारी चंद्र चमक चपलासी चमकत चंद्र मुखी राधा।

श्री गुरुदेव प्रणाम, श्री गुरुदेव प्रणाम, श्री गुरुदेव प्रणाम। श्री गुरुदेव प्रणाम, श्री गुरुदेव प्रणाम, श्री गुरुदेव प्रणाम। श्री गुरुदेव प्रणाम, श्री गुरुदेव प्रणाम, श्री गुरुदेव प्रणाम।